ओड़ी साहिब हुए दयाल कृपा करता स्वीकार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसने हुक्म मनाए सी हुक्म मने हवे परवानता कसम का महल पाए सी कसम पावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी

0: अनमलेचा खाई अंतर पूजा पड़े कते बस निमतर का भाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाए त्रंदा महला पहला
1: मानस खाने करे निवाज श्री भगाएं तिन गलताग तिन कर ब्रह्मण पूरे नाद उना भयावे ओई साथ कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करे आहार

तेड धोती कखाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पहर होवे प्रवान मलेश तान ले पुजे प्राण अपाख्या का पुठा बकरा खाना चौके उपर किसे ना जाना देख के चौका कड्डी कार उपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटे यो अन असदा फिटे तन फिटे फेड करेन मन जूठे चुली परेन कहो नानक सच त्याई है सुच होवे ता सच।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूहों को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहा 3 दिवसीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का अवैध कब्जे वाला भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत बिना किसी कानूनी आधार वाले पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को पूरी तरह खारिज करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग है और हमेशा रहेंगे। सरकार ने पाकिस्तान के सहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट

0: युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा आज विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उसमें अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े चार प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली सरकार आज से एक महीने तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान की भी शुरुआत करेगी। इस दौरान परिवहन, सड़क, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जन सुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। 4 वर्ष पहले नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से चीतों को भारत लाया गया था। कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। 52 चीतों में से 49 कोनो राष्ट्रीय उद्यान और 3 गांधी सागर अभयारण्य में है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Sarabjit Kaur.
3: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ
4: ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੁਨ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾਹਰਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਜਾਏ

0: जिन्ना मैं हर राय जो हर अंत मिलाया से छिड़कत है न जाए प्रभु बिन दूजा को नहीं नानक हर शरणाए असु सुखी वसंदिया जिन्ना मैं हर राय।
1: हम सर्वन करते हैं भक्ति रस भरपूर प्रोग्राम आराधना।
2: खेती बाड़ी

0: जय हिंद जी, रुलिया राम जी, जय हिंद।
1: जय हिंद जी, जय हिंद जी। रंगा सिंह जी बचालो, की हाल चाल है तेरा?
0: कृपा जी, उस दाते दी तुसी अपना सुनाओ।
1: तगड़ा हाल चाल। देखो रंगा सिंह जी, जेड़ा आ समा है साडे कोले
0: जी,
1: पतझड़ दी जेड़ी फसल है आलूआं दी, ओदी काश्तकारी दा बड़ा टुकमा समा है
0: जी।
1: गल है कि कोई भी फसल जेड़ी है जो आपां बिना व्योंतबंदी तो बजारे थले लेके आउने आ, तो बड़िया सारिया चीज़ां ने जिहड़ियां कमियां पेश रह जांदियां ने।
0: बिल्कुल जी, उहदा फिर नुकसान चलने पैंदा,
1: नुकसान खेत दे विच दिखदा है। सो इस करके कोशिश ही करनी चाहीदी है कि जिहड़ी अगाऊं व्योंतबंदी है
0: जी,
1: उहदे च की फसल दीआं लोड़ां है, किहड़ा बीज लैणा है, किन्ना बीज लैणा है, कित्थों बीज लैणा है, इह सारियां चीज़ां। क्योंकि बीज आलू, क्योंकि आलू इक ऐसी फसल है जे नरुआ बीज पावे, सुधरिया चंगा बीज पावे तो फसल का जम जरा चंगेरा होगा।
0: बिल्कुल जी,
1: है कि नहीं? अगर जो जहाँ तेरा अन्न पानी योजा कम जानी हिसाब हो जाता। सो इस करके एक मुढ़लिया गलों के रंगा सिंह जी, तो आप गल करते हाँ कि किस्मां ने साडे कोले वख वख तरह दीआं किस्मां है
0: जी,
1: जिन्हां नूं आप बाजारे थले लैके आ सकते हाँ। अगेतियां दे विच कुफरी सूर्या है, कुफरी चंद्रमुखी है, कुफरी अशोका किस्म है, तो कुफरी पुखराज किस्म है
0: जी महाराज।
1: तो जिहड़ियां दरम्याने समें दीआं किस्मां है, उच कुफरी पुष्कर है, कुफरी ज्योति है, कुफरी बहार है। तो इस तरह जे गल करिए पछेतियां दी, कुफरी संदूरी है, कुफरी बादशाह है
0: जी।
1: तो इह तों अलावा रंगा सिंह जी, आपां सारे जाणदे कि फसल दे विच प्रोसैसिंग दी बड़ी समर्था है।
0: बिल्कुल जी,
1: आलूआं दी फसल दे विच ते प्रोसैसिंग वालीआं किस्मां दे विच कुफरी चिपसोना है नंबर एक, कुफरी चिपसोना नंबर तीन है, कुफरी फ्राई सोना है अपने कोले।
0: बिल्कुल
1: किस्म। सो यह वख वख तरह दीआं किस्मां है जिन्हां नूं आपां ने बाजारे थले लैके आउणा।
0: ठीक
1: रंगा सिंह जी, आलू का बीज किसी भरोसेयोग वसीले तों ही खरीदना चाहिए, जिदा मैं पहलों जिक्र किया, और हर तीन चार साल बाद नवां बीज लैके पुराने बीज नूं बदल देना।

दल बल समेत भरत प्रयाग पहुंचने को है। गंतव्य का बड़ा भाग पार किया जा चुका है, किंतु उनकी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। उन कष्टों की कल्पना से उनकी ग्लानि और क्षोभ बढ़ता जाता है जो श्रीराम, लक्ष्मण और सीता न जाने किस वन में भुगत रहे होंगे। प्रयाग पहुंचकर सबने विधि पूर्वक त्रिवेणी में स्नान किया और तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम कर भरत ने अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की।

एक कलाकार इस प्रोग्राम दे विच हसरत जयपुरी दे गाए लिखे हुए कुछ गीत सुनाए जाएंगे ते इन्हां दे जीवन बारे कुछ गलबात की जाएगी सवेरे 9:02 ते। सवेरे 9:30 कुछ गजलां समात फरमाओगे।

लाइव फोन इन प्रोग्राम सुनोगे हेलो फरमाइश सवेरे 10:02 ते। व्हाट्सएप के जरिए फरमाइशां करके अपने मनपसंद पंजाबी गीत सुनोगे। प्रोग्राम होएगा तमक जलंधर पेंदी सवेरे 11:05 ते।

पारिवारिक प्रोग्राम सुनोगे वसदे वेड़े दोपहरे 12:05 ते। अज इस प्रोग्राम दे विच विश्व मरीज सुरक्षा दिवस दे विच मरीज दा कीवें रखिए ख्याल, इस बारे कुलविंदर कमल नाल कीती गलबात सुनाई जाएगी ते लोक कथा दे तहत कथा सुनोगे। आओ रंग दबिए। फौजी वीर अपना प्रोग्राम सुनेंगे फौजी वीर लई दोपहरे 1:15 तो लैके 1:40 तक ते फिर 2:00 तो लैके 2:15 तक।

0: इत्यस्याः योजनायाः अन्तर्गतं 30 लक्ष लाभार्थिनां पञ्जीकरणेन महत्वपूर्णं सोपानम् अधिगतमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना 23-2000 वर्षे अस्याः योजनायाः शुभारम्भः कृतः आसीत्। अस्याः योजनायाः उद्देश्यम् 18 निर्दिष्टेषु पारंपरिक व्यवसायेषु संलग्नेभ्यः कर्मिभ्यः शिल्पकारेभ्यश्च आरम्भात् अन्तिमचरणपर्यन्तं सर्वविध सहायतां प्रदातुम् अस्ति। तमिलनाडुराज्ये मदुरान्तकं धारापुरं चेत्येतयोः विधानसभा निर्वाचनक्षेत्रयोः आयोक्ष्यमाणेभ्यः उपनिर्वाचनेभ्यः अद्य नामाङ्कनपत्रप्रस्तुतेः अन्तिमः दिवसः अस्ति। मतदानम् आगामि मासस्य 6 दिनांके भविष्यति। मतगणना च आगामि मासस्य 9 दिनांके भविष्यति। भारतेन स्वघोषितः पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्तायोगः अस्वीकृतः। भारतस्य कथनमस्ति यत् अवैधेन बलपूर्वकेण च आधिपत्येन अधीन भारतीय प्रदेश सम्बद्धासु व्यवस्थासु प्रवेशाय पाकिस्तानस्य कश्चिदपि वैधानिकाधिकारः नास्ति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य बिहार उपहिमालय पश्चिम बंगाल केरलम तमिलनाडु प्रदेशेषु पूर्वोत्तर भारतस्य केषुचित् भागेषु च प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति पूर्वानुमानं कृतमस्ति। पुरुष क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायं 7:30 दिल्ल्याः अरुण जेटली क्रीडांगणे श्रृंखलायाः तृतीयान्तिमायां 20-20 अन्ताराष्ट्रिय क्रीडायां भारतम् अफगानिस्तान दलं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दे 7 बज रहे ने। लो सुनो हुण तक दे मुख समाचार। 5वें नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्ली दे यशोभूमि विच सेमीकॉन इंडिया दे 5वें एडिशन दा उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविख निधि संगठन ईपीएफओ अधीन लाजमी कवरेज ले तनखाह सीमा 15,000 रुपए तो बढ़ा के 25,000 रुपए प्रति महीना कर दिती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि टैक्स तजवीजा नु राष्ट्रीय हिता नु सब तो ऊपर रखे जाना चाहिए है। सरकार ने शहजाद पट्टी नेटवर्क नू गैर कानूनी गतिविधियां एक्ट तहत एक दहशतगर्द समूह ऐलान दिता है। विदेश मंत्रालय ने नवी दिल्ली विच पाकिस्तान हाई कमीशन दे चार्ज डी अफेयर्स नू तलब कीता ते समुंदर विच पाकिस्तानी जल सेना यूनिटां दे गैर जिम्मेवाराना विहार ते सख्त विरोध दर्ज करवाया है। उग्गे अदाकार अनंत नाग नू भारतीय सिनेमा विच उना दे योगदान लई 2024 दा प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान कीता जाएगा। सरकार ने सरकारी ते सरकारी खेतर दे बैंकां दे रेलवे संबंधी सोशल मीडिया ते चल रही रिपोर्टां नू फर्जी करार दिंदिया खारज कर दिता है। युद्ध नशा विरुद्ध ते नशा मुक्त मुहिम तहत मलोट विखे करवाया गया राज पदरी समागम। इस मौके कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि नशियां दे खात्मे लई समाज दे हर वर्ग दा सहयोग जरूरी। सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि सरकारी रजिंद्रा हस्पताल विखे स्थापित कीता जा रहा 300 बेडा दा ट्रॉमा सेंटर। मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल ने दसया कि खेडा वतन पंजाब दियां च पहली बार शामिल कीती गई टेनिस बॉल क्रिकेट। ए सन हुन तक दे मुख समाचार। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ हुन सुनदे आं जानकारियां ते मनोरंजन भरपूर प्रोग्राम सोनी सवेर।

राहत फतेह अली खान ते श्रेया घोषाल दी आवाज दे विच हुणे तुसी ये गीत सुनिया, फिल्म सी सिंग इज किंग। नमस्कार जी, आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सोनी सवेर लेके हाजिर हो चुकी है तुहाडी दोस्त शीतल। दोस्तों, असीं बहुत वार जिंदगी दे विच उन्हां चीज़ां दे पिछे दौड़दे रहिंदे आं जो साडे कोल नहीं हुंदियां, जां फिर असीं जिंदगी दे विच उन्हां चीज़ां दा इंतजार करदे रहिंदे आं जो शायद साडियां हो ही नहीं सकदियां। कई बार असी बहुत वधिया नौकरी की तांग करते हैं, बहुत सारा पैसा सोचते हैं, वड्डियां खुशियां, कोई वड्डी उपलब्धि चाहते हैं। असी सोचते रहने हैं कि जेकर ये सब साडे कोल आ जाए तो शायद जिंदगी बहुत सोहनी हो जाए, पर असी ये हमेशा भूल जाते हैं कि छोटिया छोटिया खुशियां दे विच ही तो जिंदगी वसदी है। छोटिया खुशियां, अपने दे नाल गलबात करना, सवेर नू शांति ते सुकून महसूस करना, परिवार जां फिर करीबियां दे नाल समां बिताउणा, यही तो है जिंदगी का असल सुख। क्योंकि जिंदगी विच किसी वड्डी घटना का इंतजार नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों नूं जीना ही तो जिंदगी हुंदी है।

जावेद बशीर दी आवाज दे विच एक खूबसूरत जिहा गीत तुसीं सुनिया, फिल्म सी भाग मिल्खा भाग। फिलहाल तुसीं किते नहीं भजना है क्योंकि मैं तुहानू देण वाली हां एक खास जानकारी। जानकारी इह है कि सितंबर दा महीना चढ़ चुकिया है ते कुछ ही समय बाद दिन त्यौहार शुरू हो जाने ने। त्यौहारां तों बाद फिर सीजन आ जांदा है जी व्याहां शादियां दा। ते जदों भी असीं व्याहां शादियां दी गल करदे हां ना तां साडे दिमाग दे विच सब तों पहला पता की आउंदा है, किन्ना ज्यादा खर्चा होएगा। वड्डी गल है, वड्डे वड्डे टेंट लगणगे, रातां नूं जगमगाउंदियां हजारां लाइटां लगणगियां, कागज़ दे डब्बियां दे ढेर लगणगे। व्याह तों बाद पिछे बचदा की है? खलारा ते खर्चियां दा बोझ। कई कई तां लखां दे कर्ज़ियां हेठ वी आ के दब जांदे ने। पर दोस्तों, हैरानी वाली गल ए है कि साडी अगली जनरेशन यानी कि साडे नौजवान हुण कुछ अजिहा नहीं करना चाहुंदे। ओह कुछ एहो जिहा करके साबित कर रहे ने कि ओह सिर्फ फैशन वाली पीढ़ी नहीं हन बल्कि वातावरण दे लई भी सब तो ज्यादा कॉन्शियस ने ते पॉकेट फ्रेंडली ने। हुण तुसीं सोचदे होंगे भी इह किवें हो सकदा है? भाई, अज दी जनरेशन ने कमाल ही कर दिखाया। व्याहां दा अंदाज ही बदल दिता है। जिथे पहलों हजारों कार्ड छप के कागज बर्बाद किया जाता सी, उथे ही हुण साडे यंग कपल्स व्हाट्सएप, ईमेल, कस्टम वैबसाइट राही डिजिटल इनविटेशन भेज रहे ने, यानी कि कागज नू बचा रहे ने। जे कागज भेजे भी जा रहे ने ना, ते वो भी कोई आम कागज नहीं हन, वो हन सीड पेपर कार्ड, यानी के व्याह दा कार्ड पढ़ो, मिट्टी दे विच फिर उसनू दबो, ते फिर उदे विचों निकलेगा एक खूबसूरत पौधा, यानी के व्याह दे बंधन दे विच बज के एक नवा रिश्ता ही नहीं तैयार हुंदा बल्कि एक दरख्त भी लगाया जा रहा है। ना कमाल दी गल। अज दा यूथ अपनी जिंदगी दी नवी शुरुआत धरती नू एक नवा जीवन दे के करना चाहुंदा है। गल इत्थे ही खत्म नहीं हुंदी। प्लास्टिक दे नकली फुल्लां नू भी बाय बाय कह रही है इह साडी नौजवान पीढ़ी, बल्कि व्याहां दे विच गेंदे ते चमेली दे असली फुल वरते जा रहे ने तां कि बाद विच उहनां दा इस्तेमाल खाद बना के कीता जावे। वड्डी गल बिजली दी भारी खपत नू बचाउण दी भी सामने आई। कहिंदे कि रातां दी बिजली दी भारी खपत बचाउण वास्ते व्याह चानण दे विच कीते जाने चाहिदे ने, यानी कि जिहड़ा मेन्यू है उह जीरो वेस्ट ते ऑर्गेनिक खाने वाला होएगा ते व्याह जिहड़ा है ओ बिजली दी खपत नू बचाउण दे लई दिन विच कीता जावेगा। है ना कमाल दी गल। ते सब तो वड्डी गल है कि साडे देश दे भोपाल, इंदौर, जयपुर वर्गे शहर ए सब तो वध सस्टेनेबल व्याहां दी मिसाल बन रहे ने। इवेंट प्लानर्स भी हुणे मानदे ने कि साडा अज दा यूथ शो ऑफ नालो वध वातावरण दी संभाल नू जरूरी मानदा है। दोस्तों, ए सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ए हुण एक रेवोल्यूशन है, एक क्रांति है। ए इस गल दा सबूत है कि साडी आउण वाली जनरेशन किन्नी जिम्मेवार है। ओ जानदी है कि खुशियां मनाउण दे लई धरती नू नुकसान पहुंचाउणा जरूरी नहीं। सलाम है जी अज दी इस पीढ़ी नू जो अपनी खुशी दे विच प्रकृति नू भी

0: खुशबू हुआ तो है।
1: भाई ये ब्यूटीफुल सॉन्ग तुसी सुन रहे सी लता मंगेशकर ते किशोर कुमार दी आवाज दे विच फिल्म आपकी कसम दे विचों लिया गया। प्रोग्राम चल रहा है आकाशवाणी जलंधर ते सोनी सवेर ते हुण वारी है जी हिस्ट्री ऑफ द डे दी, यानी के अज दा दिन की कहंदा है। अज है जी 17 सितंबर। दोस्तों अज है मानयोग श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दा जन्मदिन। 17 सितंबर 1950 नूं गुजरात दे एक छोटे जिहे कस्बे वडन नगर दे विच इन्हां दा जन्म होया सी। एक साधारण परिवार दे विच जन्मे। पिता दा नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी ते माता जी दा नाम हीराबेन सी। मानयोग प्रधानमंत्री उन्हां दे कार्यकाल दे दौरान देश विच वड्डियां योजनावां ते इतिहासिक फैसले लए गए। सब तो पहला डिजिटल इंडिया ते स्वच्छ भारत अभियान। उन्हां दी अगवाई दे विच कौमांतरी पद्धर ते देश नूं इक नवी पछाण मिली, जिस विच भारत दी विदेश नीति मजबूत होई है ते विश्व पद्धर ते भारत दा प्रभाव भी वध्या है। इस दे नाल ही नाल भारत दे विश्व प्रसिद्ध चित्रकार एम एफ हुसैन दा भी जन्म अज दे दिन ही होया सी। 17 सितंबर 1915 नूं एम एफ हुसैन होना दा जन्म होया सी। इस दे नाल ही नाल तमिलनाडु दे महान समाज सुधारक ते द्रविड़ अंदोलन दे पितामा पेरियार दा जन्म 17 सितंबर 1879 यानी के अज दे दिन ही होया सी। सो इस सन अज दे दिन दे इतिहास नाल जुड़ियां होईयां कुछ खास गल्लां। सो इस दे नाल ही नाल अगले गीत वाल जाने हां ते फिर आनी हां मैं वापस होर जानकारी लेके।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਨੀ ਸਵੇਰ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 8 ਵਜੇ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ, 8:15 ਵਜੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 8:30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਜਯਾ ਭਾਰਤੀ। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया। कहा, पाकिस्तान को अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र से संबंधित किसी भी समझौते में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया। और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहे 3 दिन के सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम्स, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना है। समानांतर सत्रों में डिस्प्ले उद्योग में हुई प्रगति, सहयोग और संयुक्त उद्यमों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किए गए 6 कंट्री राउंड टेबल, महिला नेतृत्व पर एक मंच आदि शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया 2026 एक व्यापक मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाएगा, जिसमें सेमीकंडक्टर सामग्री, उपकरण और चिप डिजाइन से लेकर निर्माण, उन्नत पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम तक की यात्रा प्रदर्शित की जाएगी। नया रेत से सिलिकॉन से सिस्टम तक मूल्य श्रृंखला अनुभव सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में इस पूरी यात्रा को प्रस्तुत करेगा। सेमिकॉन इंडिया 2026 में 600 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी और लगभग 50,000 आगंतुकों को आकर्षित करने की उम्मीद है। इनमें 52 देशों से प्रतिनिधि, 400 से अधिक अधिकारी और 150 से अधिक वक्ता शामिल होंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना करेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके जनसेवा के 25 वर्षों के उपलक्ष्य पर उनके जन्मस्थान वडनगर में विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ऐतिहासिक शर्मिष्ठा तालाब पर आयोजित महाआरती में भाग लेंगे, जहां से पवित्र जल का कलश वाराणसी जाने वाले बाइकर्स को सौंपा जाएगा। इसके बाद दोनों नेता हाटकेश्वर मंदिर तक पदयात्रा पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पटेल वडनगर

0: रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत श्रमदान भी करेंगे। अपर्णा खूंट की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन के मौके पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चन और रुद्राभिषेक किया जाएगा। इसके साथ ही वाराणसी से वडनगर तक की सेवा यात्रा पर निकलने वाले 500 युवा बाइकर्स का सम्मान भी किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य अतिथि मौजूद रहेंगे। प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर ने बताया कि युवा बाइकर्स को सेवा यात्रियों के रूप में झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। बाइक यात्रा के शुभारंभ से पहले काशी स्थित ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ का पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े चार प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान परिवहन, सड़क, सीवरेज, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जनसुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा।
3: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के अंतर्गत आज कर्तव्य पथ पर 1,00,000 से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। जन सेवा से देश सेवा के मार्गदर्शक सिद्धांत से प्रेरित ये कार्यक्रम जन भागीदारी और सेवा की भावना का एक मजबूत संदेश देगा। इस बीच थ्यागराज स्टेडियम में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक एक मेगा रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुर में GD करना रोड पर खाटू श्याम तेली धाम में 108 कुंडीय यज्ञ का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा श्रमिकों के लिए एक नमो श्रमिक केंद्र शुरू किया जाएगा, जो एक ही छत के नीचे पंजीकरण, दस्तावेज सत्यापन और कल्याण योजनाओं से संबंधित सेवाएं प्रदान करेगा। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से इस सोच को जमीन पर उतारने के एक उदाहरण की जानकारी दे रहे हैं। मेक इन इंडिया के अंतर्गत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजनाओं के माध्यम से भारत में 20,41,000 करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन हुआ है और 14,15,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।
4: वर्ष 2014 में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल ने भारत को एक वैश्विक विनिर्माण शक्ति में बदल दिया है। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014-15 के 1.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 13.11 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं मोबाइल फोन निर्यात में 171 गुना की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिससे भारत एक शुद्ध आयातकर्ता से एक शुद्ध निर्यातकर्ता बन गया है। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विजन को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत का मुख्य आधार बताया।
5: सारण और सिलिकॉन वैली के बीच नया ब्रिज सा बन गया है। कैलिफोर्निया की कंपनी के लिए सारण का ये प्लांट इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल्स दे रहा है। सारण में बनने वाले मॉड्यूल्स अमेरिका की कंपनियों तक पहुंचेंगे और वहां से पूरी दुनिया को पावर देंगे। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र की सफलता की गूंज दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी।
4: आकाशवाणी से बात करते हुए राजकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष पार्थ गणात्रा ने बताया कि मेक इन इंडिया योजना से राजकोट के MSME क्षेत्र को बड़ा लाभ हुआ है।
6: हाल राजकोट MSME उद्योग काफी सुवर्ण युग से पसार हो रहा है, उसमें कई वजह से उसको प्रोत्साहन मिला है। खास करके सरकार का जो हाल ही का निर्णय है मेक इन इंडिया, उसकी वजह से रेलवे और डिफेंस में भी राजकोट के काफी स्पेयर पार्ट्स जाने शुरू हो चुके हैं।
4: आज गुजरात मेक इन इंडिया पहल के प्रमुख विकास इंजनों में से एक बना है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में एक उज्जवल और सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए

0: अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने तथा कथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इस वर्ष ये अभियान 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। इनमें स्वच्छता वाले चिन्हित स्थानों और सार्वजनिक स्थलों का कायाकल्प, स्वच्छ पाठशाला, स्वच्छता के लिए युवा, सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर, स्वच्छता के लिए जन भागीदारी और स्वच्छता से समृद्धि शामिल है। हैदराबाद रियासत ने 17 सितंबर 1948 को आज ही के दिन भारतीय संघ में विलय किया था। इसकी स्मृति में आज हैदराबाद में मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार वर्ष 2022 से आधिकारिक रूप से हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह आयोजित कर रही है। मुख्य कार्यक्रम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि होंगे। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने महंगाई पर काबू पाने के लिए 2023 के बाद पहली बार अपनी प्रमुख ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। दर में 1/4% की बढ़ोतरी के बाद फेडरल रिजर्व की प्रमुख दर लगभग 3.9% हो गई है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था को लक्षित करते हुए व्यापक प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया है। इस विधेयक का नाम दक्षिण कैरोलिना के दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखा गया है। विधेयक के समर्थन में 262 और विरोध में 159 सांसदों ने मतदान किया। विधेयक को पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात में भी आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत पहले 2 मुकाबले जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद जया। प्रधानमंत्री की जन्मतिथि पर आज से शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान। 1.25 लाख दियों से जगमग होगा कर्तव्य पथ। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ शीर्षक दिया है। राजस्थान पत्रिका ने विशेष कॉलम में लिखा है, मोदी एट 76, संघर्ष से शिखर तक का सफर। दैनिक जागरण के संपादकीय में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा है, मोदी के शासनकाल की सबसे स्थायी उपलब्धि भारतीय समाज की मुख्य धारा का विस्तार है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए प्रतिमाह करने के समाचार को आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने खुशखबरी शीर्षक से लिखा है, कैबिनेट में लिया गया फैसला, पेंशन का दायरा बढ़ेगा। 2013 झीरम घाटी हमला, 10 दोषियों को सजाए मौत, पंजाब केसरी के शब्द हैं। पत्र लिखता है, हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत 29 की मौत हुई थी। तृणमूल के 10 बागी विधायकों को अयोग्यता याचिका पर नोटिस जारी, हिंदुस्तान की खबर है। हिंदुस्तान अपने संपादकीय पन्ने पर भारत की अध्यक्षता में 18वीं ब्रिक्स

0: शिखर सम्मेलन के सफलतापूर्वक समापन पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, ब्रिक्स से भारत को मिले अनेक लाभ। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि सामरिक दृष्टि से भारत का महत्व बढ़ा है। भारत आज न केवल ब्रिक्स बल्कि G20, G7, क्वाड, SCO जैसे तमाम वैश्विक संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। जनसत्ता ने देश व्यापार पन्ने पर लिखा है, न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ व्यापार समझौते को मंजूरी दी। पत्र लिखता है, इसके अंतर्गत न्यूजीलैंड भारत के 100% निर्यात पर शुल्क मुफ्त पहुंच देगा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन

0: प्रभजोत जी, मैं सुनिया वसदे वेले प्रोग्राम च कुछ तब्दीली हुई है।
1: बिल्कुल सुखजीत जी, तब्दीली तो हुई है।
0: ओ केड़ी तब्दीली है भाई?
1: देखो जी, जेड़ा प्रोग्राम आंदा सी ना बुधवार नू, ते ओ हुन हो गया शनिवार नू।
0: यानी कि झांजरां दे बोर हुन शनिवार छन क्या करनगे?
1: बिल्कुल जी, ते जेड़े शनिवार नू प्रोग्राम सी ना, मेरी कलम तो सांझ शक्ति रूपा, ए तुसी सुन सकोगे बुधवार नू।
0: यानी कि बुधवार दी झांजरां दे बोर वाली फरमाइश शनिवार नू छन क्या करेगी, ते शनिवार दे सारे सिलसिले असी बुधवार पेश करया करा।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: वीडियो लाइक करन दे पैसे मिलनगे? सो इजी।
2: फसिया।
3: अनजान लिंकां ते क्लिक ना करो। RBI कहंदा है,
4: जानकार बनो, सुचेत रहो।
5: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

हजरत जयपुरी हिंदी सिनेमा दे सुनहरे युग दे एक मशहूर भारतीय शायर ते गीतकार सन। उन्होंने बॉलीवुड नूं कई अजे सदाबहार गीत दिते जो अज भी लोकां दे जुबानां ते अजे भी कायम ने। राज कपूर, शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी दी तिन्नां दी जोड़ी ने सुपरहिट फिल्मां विच शानदार गीत दिते। हसरत जयपुरी दे बारे, उन्हां दे जीवन बारे, बहुत सारियां उपलब्धियां दे बारे गल करांगे अज इस प्रोग्राम दे विच। ते आओ सुनदे हां पहलां उन्हां दा ही रचिया होया एक गीत।

गीत बहुत ही मशहूर होया, जिया बेकरार है छाई बहार है। इस सुपरहिट गीत दे नाल ही उन्हां दे वास्ते रोजगार दे ते फिल्म दुनिया दे रस्ते खुल गए ते बहुत सारे उन्होंने गीत बाद विच इस इंडस्ट्री नूं दित्ते। ते कहिंदे ने कि प्यार दी पहली कविता उन्हां ने किसी तो इंस्पायर हो के लिखी सी। किस्सा कुछ इस तरह है कि 20 साल की उम्र विच उन्हां नूं अपने घर दे कोल रहिंदी एक गवांढण दे नाल प्यार हो गया जो उन्हां दी उम्र दी सी। ते उन्हां ने उहदे प्यार विच पै के एक चिट्ठी लिखी, एक कविता लिखी, पर प्यार एक तरफा सी। चिट्ठी उस कुड़ी तक कभी पहुँची नहीं तो वह प्यार दिल में ही दबिया रह गया। कितने ना कि एहसास उन्हें हर गीत दे विच मिलता है कि रोमांटिक गीत सानू सुनन नू मिलते ने। सो इस कहानी तो ही इंस्पायर होकर उन्होंने एक फिल्म दे विच एक गीत लिखिया। आओ सुनते हैं उस सिचुएशन का ही एक गीत।

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
1: Hindustan has to be divided not into just two parts, but into many, many parts.
2: 16 August, direct action day hoga.
3: ऐसा होता है तो कोई भी देश फिर से गुलाम बना लेगा।
4: हम फिर से गुलाम नहीं बन सकते।
5: उन्हें लगता है कि वो हम सबको अलग कर सकते हैं। हमारी अहिंसा को कमजोरी मत समझो।
6: सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 और पुनः प्रसारण रात 10:00
7: सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
8: हेलो,
9: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाए। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
10: अजय ही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
11: जी दोस्तों, हसरत जयपुरी दे बारे कुछ असी गल्लां बातें कर रहे सी ते हुण उहनां दे फैमिली बारे परिवार बारे जे गल करिए ते उहनां दी पत्नी बिलकीस जयपुरी नाल उहनां दा विआह 1953 दे विच होया। उहनां दे दो पुत्तर हन, अख्तर हसरत जयपुरी ते आसिफ हसरत जयपुरी, दोवें मुंबई च रहिंदे ने ते इक धी किशवर जयपुरी जो पाकिस्तान च विआही होई है। सो उहनां दे पोतरे ने दो, आदिल जयपुरी ते अमन जयपुरी। सो उन्हां बारे होर गल्लां बातां करदे हां, आओ सुनदे हां उन्हां दा ही रचिया होया लिखिया होया एक गीत।

मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं और ख्वाहिशें अधूरी हैं। मालूम है कि ख्वाब अधूरे हैं, ख्वाहिशें अधूरी हैं, पर ज़िंदा रहने के लिए कुछ गलत फहमियाँ भी ज़रूरी हैं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली

तुमसे बिछड़ कर ये जाना, कुछ लोग दूर होकर भी दूर नहीं होते। तुमसे बिछड़ के ये जाना, कुछ लोग दूर होकर भी दूर नहीं होते। बस सामने नहीं होते, फिर भी हर ख्याल में मौजूद होते।

0: जी हैलो फरमाइश प्रोग्राम शुरू कर चुकी हैं लता मंगेशकर दे आशा भोसले ते किशोर कुमार दे गाए हुए इस गीत दे नाल ते इस प्रोग्राम विच पहली कॉल साडे नाल जुड़ चुकी है आओ गलबात करके उन्हां दी फरमाइश पुछदे हां हैलो
1: मेरा जी प्यार ते सत्कार भरी सति श्री अकाल भाई
0: सति श्री अकाल जी कौन गलबात कर रहे हो
1: मैं जा भाई पिंड मौड़ तो जिला बठिंडा तो जीजी तो मत्तू बोलदा भाई
0: जी जगजीत जी बहुत बहुत स्वागत है हैलो फरमाइश दे विच अपना हाल चाल दसो की हाल चाल है काफी बारिश हुई है ते मौसम नु फर्क पै गया ते हुन दसो तुहानु दूजी खबरी खुशखबरी असि दिने आ गीत केड़ा सुनोगे आपां तुहाडी फरमाइश पूरी कर दांगे
1: गीत भाई पुरानी शोर फिल्म भाई ओदे विच सुना दे पानी दे पानी दे रंग कैसा भाई
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने लिए सुनो अपना मनपसंद गीत अपने रेडियो सेट ते
1: ठीक है भाई बाबा नाम से चढ़ती कला चके सत श्री अकाल भाई
0: सत श्री अकाल जी

0: जी हेलो, फरमाइश प्रोग्राम दे विच एक होर कॉलर आके जुड़ चुके ने, आओ गलबात करके फरमाइश पूछदे आ। हेलो
1: मैडम जी, नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार जी, कौन गलबात कर रहे हो?
1: मैडम जी, मैं सुखदेव कुमार प्रजापति अबोर तो बोल रहे हैं जी।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है प्रजापति जी, थोड़ा प्रोग्राम हेलो फरमाइश, अपना हाल चाल दसो।
1: धन्यवाद मैडम जी, हाल चाल ठीक है मैडम जी, तुसी सुनाओ जी।
0: ते मौसम दा की हाल है?
1: मौसम दा मैडम जी, रात नू बदलवाई हुई, बारिश तो आई नहीं बस।
0: चलो जरूर आऊगी, क्योंकि एक पहले भी कॉल आई सी, उत्थे बारिश हो चुकी है, साडे भी बारिश हो चुकी है, ते कोशिश करांगे कि ताडे शहर च भी मीह पै जाए। ते फरमाइश दसो अपनी, कड़ा गीत सुनाइए तुहानू।
1: मैडम जी, हसीना मान जाएगी फिल्म दा गीत है जी, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया फोन कर ली, सुनो अपना मनपसंद गीत।
1: धन्यवाद मैडम जी।

आशिक मेरा ले ढूंढो यहाँ तुम भी साथी मिल जाएंगे हुस्न वाले। ऐसा मौका

0: जी देखो देखो देखो, एक और कॉलर इस प्रोग्राम चकर जुड़ चुके ने। आओ गल बात करके उन्हें फरमाइश पूछते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्ते बहन जी, गुड इवनिंग।
0: नमस्कार जी, अपना नाम दसो, कौन गल बात कर रहे हो?
1: चंद्रपान डल बोलदा जी, कल वाला अमरकोट नेड़े हबोर मंडी जिला फाजिलका।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम। हेलो फरमाइश, अपना हाल चाल दसो, की हाल चाल है?
1: ठीक है मेरी बहन, तुसी सुनाओ, राजी खुशी हो?
0: बिल्कुल वधिया। ते हुन दसो थानू गीत केड़ा सुनाइए अज?
1: बहन जी गीत है जी मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म है दोस्ती
0: जी।
1: अच्छा हुंदा मैं तुझे चार साल से या कोई कोई भी सुना दे मोहम्मद
0: रफी जी। बहुत बहुत शुक्रिया फोन कर ले। अपना मनपसंद गीत जो तुसी फरमाइश कीता सी असी सुनान जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: धन्यवाद जी।

0: जी समा हो रहा है जी 10:50 ते 30 सैकेंड ते। इस प्रोग्राम विच पूरे भी 10 मिनट हजे बाकी ने। तुसी चाहो तो कोशिश करके इस प्रोग्राम विच अपना फोन नंबर मिला के अपने मनपसंद गीत साढ़े को फरमाइशा करके पूरे कर सकते हो। सो एक होर कॉलर आके जुड़ चुके ने, आओ गलबात करते हैं। हैलो
1: हेलो
0: सत श्रीकाल जी, कौन गलबात कर रहे हो? जी ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣੋਗੇ ਗਿਆਨ ਜੀ?
1: ਇੱਕ ਫੂਲ ਦੋ ਮਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
0: ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਗੀਤ ਸੁਣੋ।
1: ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।

0: जी हेलो, फरमाइश प्रोग्राम दी आखरी कॉल रिसीव करन जा रहे हैं ते देखने किस गीती फरमाइश होन जा रही है जी साडे कोलो। हेलो
1: मैडम नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन वकाल बात कर रहे हो?
1: मैं सोहन लाल बोलता, पिंड सलामवाला, जिला फाजिलका तो।

0: जी सोन जी, बहुत बहुत स्वागत है हेलो फरमाइश प्रोग्राम
1: धन्नवाद
0: च।
1: शुक्रिया सर जी,
0: जी
1: धन्नवाद
0: असीं
1: शुक्रिया
0: सब नूं पुछिया अपने शहर दा हाल, दसो की हाल चाल है तुहाडे शहर दा,
1: हाल
0: मौसम
1: चाल
0: किद्दां?
1: ठीक है। कणिया मीह पै गया रात।
0: अच्छा जी, ते मौसम
1: हाँ जी
0: वधिया
1: हाँ,
0: हो गया?
1: हाँ मौसम बहुत बढ़िया हो गया।
0: ते हुण गाना केड़ा सुनोगे इस खुशगवार मौसम दे विच?
1: ओ जब जब फूल खिले रहा जा, नाना करते प्यार तुम इसे कर बैठे।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने लई। अपना मनपसंद गीत अपने रेडियो सेट ते सुनो।
1: शुक्रिया, धन्यवाद थोड़ा, बहुत बहुत।

0: करने है। सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम तक इकोसिस्टम का निर्माण। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना है। समानांतर सत्रों में डिस्प्ले उद्योग में हुई प्रगति, सहयोग और संयुक्त उद्यमों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किए गए 6 कंट्री राउंड टेबल, महिला नेतृत्व पर एक मंच आदि शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया 2026 एक व्यापक मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाएगा, जिसमें सेमीकंडक्टर सामग्री, उपकरण और चिप डिजाइन से लेकर निर्माण, उन्नत पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम तक की यात्रा प्रदर्शित की जाएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने बताया कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर अधिक भीड़ वाले पर्यटन स्थलों और पर्यटक केंद्रित समुद्र तटों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन के अवसर पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली सरकार भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े 4 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस दौरान परिवहन, सड़क, सीवरेज, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जन सुविधाओं और शहरी सौंदर्यीकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री के 25 वर्ष के सार्वजनिक जीवन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की सराहना की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सरकार ने सोशल मीडिया पर जारी उस भ्रामक सूचना का सिरे से खंडन किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के बाद कुछ वैश्विक नेता बीमार पड़ गए थे। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को पूरी तरह से फर्जी बताया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्टेम सेल थेरेपी के विनियमन से संबंध में परामर्श जारी किया है। इस संबंध में दिशा निर्देश भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने संयुक्त रूप से जारी किए। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरल, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और उत्तराखंड में आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, DRM 864 किलोहर्ट्ज़, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़, FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज़।

प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी और प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी च मिट्टी पंजाब दी महके गल्लां विच पंजाब वसदा है। जदों वज्जे कोई सोहना गीत दिल होर भी हसदा है। फरमाइशां लैके आउंदे ने साडे स्रोते प्यारे दूर दूरों, गीतां दे रंग सजाउंदे ने दिलां दे हर कोरों। तुहाडे सुनेहां दी मिठास, तुहाडियां फरमाइशां दी धमक, इही तां बणाउंदी है साडी महफिल नूं खास ते चमकदार। तां फिर अपनियां फरमाइशां ही पूरियां करन लई हो जाओ तैयार संगीत दी इस सोहनी सैर लई, क्योंकि तुहाडियां फरमाइशां नूं पढ़न जा रही हां। और सब तो पहले साडे कोल सुनेहा पहुँच चुका है कृष्णा पार्क दिल्ली तो, सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना गुरवंश सिंह जौड़ा। इन्हां लई ताड़ियां, क्योंकि सब तो पहले सुनेहे लई साडियां ताड़ियां वाजी जांदियां। और ऐ नहीं कि तुसी सारे सेम उसी वेले नहीं पहुँचे, तुसी भी उसे वेले ही पहुँचे हो, पर सब तो पहले यही पहुँचे ने पिंड शाहपुर मेहतपुर तो बूटा सिंह, विजयपाल सिंह, अजयपाल सिंह, पाहुलजोत सिंह, अनाहत कौर, लवप्रीत कौर, परविंदर कौर, हरप्रीत कौर ते गगनदीप सिंह। प्रोग्राम च अगला सुनेहा सुभाष शर्मा, सुदेश शर्मा, निशांत शर्मा, अनुराधा निवान ते निया शर्मा, ये पहुँचे ने अपने सुनेहे दे नाल उने तो हिमाचल प्रदेश तो। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं पहली बारी तुहाडे नाम पढ़ रही हूँ, बड़ी खुशी हो रही है जी। प्रोग्राम च अगला सुनेहा साडे तक पहुँचाया डिस्ट्रिक्ट पंचकूला तो वेद प्रकाश, प्रजापति, लक्ष्य, एंजल, नेहा, अंजलि और शुभम तिलवली ने। सोन सिंह पिंड दौलेवाला जिला मोगा तो, इन्होंने बड़ी वेले से हाजरी भरी अज। अगले सुनेहे दे नाल पिंड वड़िंगखेड़ा जिला श्री मुक्तसर साहब तो भोला सिंह सिद्धू, पूरा सिंह गहलोत, वकील सिंह चायल, पिंड संतपुरा राजस्थान तो टेक सिंह सिद्धू, पिंड लैपो गैरी तो गुरमीत सिंह, पिंड बजीतपुर भोमा तो बलजीत सिंह। अगली फरमाइश लैके वरिंदर शर्मा, कमलेश शर्मा, दीक्षा शर्मा, रॉबिन व्यांश शर्मा, ये धर्मकोट डिस्ट्रिक्ट मोगा तो इन्होंने सुनेहा भेजे। पिंड अलूना मियाना तहसील पायल डिस्ट्रिक्ट लुधियाना तो दर्शन सिंह, अवतार सिंह, जबरजंग सिंह चीमा, महतबीर सिंह रायपुर, और सारा ही परिवार इन्हों का समय नाल पहुँचता है और हमेशा असी तुहाडे नाम पढ़ के जाने हैं। रम्मी हैबोवाल अपने पूरे परिवार नाल हैबोवाल कलां हलका उत्तरी जिला लुधियाना पंजाब तो, और श्री फतेहगढ़ साहब तो रामनाथ हतापुर, सुखमनजीत सिंह, सहजप्रीत कौर, शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पिंड नथाणा बठिंडा तो हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, ये भी अपने सुनेहे नाल हाजिर। तमक जलंधर पेंदी च मेन बाजार मंडी लादुका डिस्ट्रिक्ट फाजिलका तो अनमोल चावला, दीपिका चावला, किरणा चावला वारिस ते चावला परिवार। पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश तो सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभी, अश्विन, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। मक्खू तो बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर, फिरोजपुरी और मनीष बजाज भी अपने सुनेहे नाल पहुंच गए। सैयद मसरूर, शायना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया, आफिया, इब्राहिम और सद्दाम, कुमार हेड़ा, सहारनपुर तो इन्होंने सुनेहा भेजे। पिंड बनवाला हनवंता फाजिलका तो विनोद मायल, सीमा, लक्षिता, यसिका, माता विद्या देवी, सारा ही मायल परिवार। और

जुगनी जावड़ी सदर बाजार जुगनी जावड़ी बजूनी जावड़ी सदर बाजार अगे टांगा पिछे कार जुगनी फस गई अद बचकार अग

अजीत सिंह नगर मोहाली तो गुरप्रीत सिंह तंगौरी, जसबीर कौर, महकप्रीत कौर ते सहजप्रीत सिंह। लो जी महकाता तुसी साडे प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी नूं बहुत ही खूब। और अगला सुनेहा मनीला फिलीपीन तो मदन मोहन लहर, सरबजीत, संजू लहर, नीतिका, अजय, एंजल, लाडला पोता अर्नव लहर। देखो फिलीपीन तो भी ये वेले नाल पहुँच गए ने। और राम राम जी साढ़े प्रोग्राम च कौन भेजते हैं? न्यूजीलैंड तो अभिषेक जैन, मनजिंदर, संधु, जशनप्रीत संधु, बेबी संधु, मुल्लापुर दाखा मंडी तो बिट्टू जैन, मट्टू जैन, दीपक, राजा, गौतम, अत्रो जैन, चत्रो जैन, सारा ही जैन परिवार अपने धमक जलंधर पैंदी प्रोग्राम च अपने सुनेहिया नाल वेले सिर पहुँच गए ने। अस्तुपुरा जिला मऊ तो मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, मोहम्मद सादिक, बहादुरगंज गाजीपुर तो आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद जी धन्यवाद। फ़ोन नंबर लिखन की कोई जरूरत नहीं है, तुसी अपने नाम पते नाल पहुँच गए, अपने सुनेहे भेज दिते तुसी वेले से, क्योंकि धमक जलंधर पैंदी प्रोग्राम च तुसी 10 बजे तो लैके 10:30 बजे दे विच विच अपने सुनेहे भेज सकते हो। मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक ते वंश बत्ता, सारा ही बत्ता परिवार कनेरा मोहल्ला पटियाला तो, और गांव जाखोद राजस्थान तो शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक, सारा ही खटक परिवार अपने सुनेहिया नाल पहुँच गए ने जी। पिंड चंजेड़ी, तहसील खरड़, जिला SAS नगर तो लियाकत अली, निशा, शाहीन, यासमीन, अरमान मलिक और सारा ही परिवार इन्हों का। अगला सुनेहा पिंड कातरों तो अमरीक सिंह औलक, जसविंदर, सुखन प्रीत, जशन, बिंदर खेड़ी, सुखचैन सिंह पवार सनौर तो, परवीन कौर, हरमनजोत कौर, मनजोत कौर, जोबन प्रीत सिंह,

श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, जग्गुताई राजे जाधव, कुमार संचेत देशमुख, मुकाम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद तो, और मोताला और करड़ा तो कुमार प्रथमेश सरवद हर्षिता सानवी और प्रणाली देशमुख, सारा ही राजे जाधव देशमुख परिवार। आकाशवाणी जलंधर हमेशा दी तरह अपने सुनेहियां नाल, और सैक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान तो रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित और बेबी गर्वी, सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो टीडी मल्होत्रा, रितिक प्रतीक, अनिल जयवीर, डॉक्टर अमनदीप, कालका तो शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, जगदीश सिंह मठाड़ू, वीरपाल कौर और गुरबख्श सिंह मठाड़ू मोगा तो इन्होंने सानू सुनेहा भेजा है। और डॉली गुलेरिया दी आवाज़ च एक गीत सुनना चाहते ने। वैसे गीत तो यही कहता कि अमृतसर दे पापड़ वे मैं खांदी ना, वैसे स्वाद तो उही होंदे ने, है ना। चलो कोई गल नहीं, गीत सुनते हैं।

0: गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ने कहा कि निर्माण और आत्मनिर्भरता हमारी परंपरा में शामिल रहा है।
1: हमारी परंपरा में भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन की शक्ति का प्रतीक माना गया है। एक तरफ हमारी सदियों पुरानी निर्माण की परंपरा और दूसरी तरफ 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी और विजन, यही आत्मनिर्भर भारत की, विकसित भारत की हमारी प्रेरणा भी है।
0: सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमिकॉन के 6 स्तंभों के बारे में जानकारी दी।
2: सेमिकॉन 2.0 विल बिल्ड द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ओवर 6 पिलर। पिलर नंबर 1 इज डिजाइन, द पिलर नंबर 2 इज मशीन्स एंड मटेरियल्स, पिलर 3 विल बी मोर डिस्प्ले मेमोरी सिलिकॉन कंपाउंड एंड लॉजिक फैब्स, पिलर 4 विल बी मोर एडवांस्ड पैकेजिंग यूनिट्स, पिलर 5 विल बी रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
0: तीन दिन का ये सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम में 600 से अधिक प्रवर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहे हैं। प्रदर्शनी में 6 देशों जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड, सिंगापुर और स्वीडन के पवेलियन, भारत से 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक स्टार्टअप पवेलियन शामिल है। इस सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम तक इकोसिस्टम का निर्माण। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक
3: से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नित्य निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन के मौके पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देशभर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने आज नई दिल्ली के आकाशवाणी परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर अपर महानिदेशक एस सुब्रमण्यम भी उपस्थित थे। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी मिलने पर चलाए गए संयुक्त आतंकरोधी अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया। परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनुसूची H1 और X की औषधियों पर नियामक निगरानी को मजबूत करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इन औषधियों को खरीदने के लिए ग्राहकों को वैध पर्चे की आवश्यकता होती है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहेर, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश है परिवारिक प्रोग्राम वस्ते वेड़े।

0: जी सचमुच सेहत बहुत ही जरूरी है, है ना?
1: बिल्कुल सही गल है। सेहत दे नाल ही हर जिंदगी दा सोहना रंग है। जेकर तुसी तंदुरुस्त हो, तुसी हेल्दी हो, तां मैं कहिंदी रिश्तियां दे विच वी मिठास ते प्यार रहिंदा, क्योंकि जदों तुसी बीमार पैंदे हो ना तां दूजे उत्ते बोझ लग जांदे हो।
0: बिल्कुल जी, अज इक बहुत ही अहम दिन है ना मीनू?
1: बिल्कुल,
0: अज विश्व मरीज सुरक्षा दिवस है। मतलब कि जेहड़े मरीजां दी सुरक्षा करदे ने, जेहड़े लोग, खास करके साडियां जिहड़ियां नर्सां भैणां ने, भरा ने, है ना, उह जिहड़ा इह काम करदे ने, उह होर कोई वी नहीं कर सकदा। बहुत ही वड्डा काम है जिहड़ा कि उह मरीजां दी सेवा कर रहे ने।
1: बिल्कुल, मरीज दी सुरक्षा दा मतलब है कि उस नूं सही मरीज वजों पछाणिया जावे, सही दवाई ते सही इलाज दित्ता जावे, हर प्रक्रिया दौरान सुरक्षा ते नियमां दी पालना कीती जावे। ते इह सिर्फ ते सिर्फ उही निभाउंदे ने जो डॉक्टर दे अंडर काम करदे ने, साडे नर्सिस ते वार्ड बॉयज, इह सारे मरीज नूं देखदे ने, मरीज दी देखरेख करदे ने। सो इन्हां दा सब तों वड्डा रोल कह सकदे हो कि साडी जिंदगी दे विच है।
0: बिल्कुल जी, इह तां ही हो सकदा है जे साडे अंदर भावनावां ने कि असीं मरीज नूं ठीक करना है, और मरीज जिहड़ा है उह ठीक हो के जदों जांदा है, और मैनूं लगदा हुंदा है कई वारी, मैं बहुत थावां ते देखिआ है कि जिहड़ा पेशेंट हुंदा है या उहदा अटेंडेंट हुंदा है, उह किसी ना किसी नर्स दा हत्थ फड़ के उस नूं दुआवां दे रहा हुंदा है कि तू सानूं ठीक करता। वाकई ही हस्पतालां दे विच जदों तुसीं जाके देखदे हो कि इन्हां दी किन्नी मेहनत है, इन्हां दे सदका जिहड़े ने साडे मरीज जिहड़े ने उह ठीक हो रहे ने। ते अज असीं इह दिहाड़ा मना रहे हां, ते इह दिहाड़ा इक दिन दा नहीं है, इह रोज़ दा मनाया होया दिहाड़ा। ते पिछले कुछ चिरां पहलां साडे कोल कुलविंदर कमल आए सन, है ना?
1: बिल्कुल सही गल है।

0: है।
1: शाबाश, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे।
2: सचमुची मामूली जिहा फर्क सी जिन्ना किसी जवान की अदा नालों बालक की अदा विच हुंदा है। बिट्टा हैरान परेशान बबले दे बलिहार जा रहा सी। स्रोतियां नूं प्रभावित तक के बबला अपनी ऑर्गन कढ लिया आया। बिट्टे दे बहिंदिआं बहिंदिआं उस ऑर्गन दीआं धुनां कढ विखाईआं।

0: जी कहानी आओ रंग दबिए नाटकीय अंदाज से तुसी सुन रहे सी सिलसिला सी कथा लोग।
1: बिल्कुल जी, कथा लोग दे तहत असी ये कहानी सुन रहे सी। ते वैसे असी बहुत सारिया गल्लां बातां कर चुके हैं और असी अगे भी गल्लां बातां करनियां ने, पर मैनू एक निक्का जा एक गीत सुन लिया जी।
0: हाँ
2: हाँ जी
3: बीबा जी, ये गाना तुसी गा रहे सी?
2: नहीं जी, रूप ते बसंत गा रही सी।
3: मैं

0: हाँ जी बिल्कुल निक्का जी सी है ना मीनू
1: बिल्कुल और
0: जी।
1: बहुत सोहना गीत सी गीत वांगी ये प्रोग्राम भी बहुत सोहना रहा। बहुत वधिया सिलसिले असी लैके आए हैं क्योंकि असी चाहते हैं कि साढ़े जिहड़े स्रोते ने वह जागरूक रहे।
0: बिल्कुल जी, और देखो असी हर वारी चलते चलते एक गलबात करते हाँ कि ये पूरा तो पूरा वरा जो पूरा तो पूरा महीना जोड़ा है वह असी पौष्टिक जिहड़ी आहार है उसनों असी समर्पित किया होया है। असी चाहते हाँ कि सारे जने पौष्टिक आहार जोड़ा वह ही लैन।
1: बिल्कुल पौष्टिक आहार लैन, चंगा खाण और मौसमी फल सब्जियां दी ही खाण, क्योंकि
0: जी
1: कई बार असं जो मौसमी फल सब्जियां नहीं खाते तो बहुत सारिया जड़ियाँ कमियां शरीर दे विच आ जांदियां ने।
0: जी बिल्कुल, और इस करके चाहिदा यह है कि हरे पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल जिवें हुण अजकल सेब है, मौसमी है, तो इस तरह दी चीज़ां, अनार आ चुका है मार्केट दे विच, यह जरूर जिहड़ियां चीज़ां ने वह लैनिया चाहिए ने। और देखो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि कोल्ड स्टोर दी चीज़ां जिहड़ियां नहीं लैनिया चाहिए। सो जी हुण वेला भी मुकदा पिया ना,
1: जी बिल्कुल,
0: तो इस वादे दे नाल कि कल फिर मिलांगे, लईए इजाजत,
1: जी
0: नमस्कार।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵਿਹੜੇ, ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ 1 ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਲੋ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि परिसर में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय ये सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एक ओर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ भारत पर दुनिया का भरोसा भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।
2: हमारी परंपरा में भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन की शक्ति का प्रतीक माना गया है। एक तरफ हमारी सदियों पुरानी निर्माण की परंपरा और दूसरी तरफ 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी और विजन, यही आत्मनिर्भर भारत की, विकसित भारत की हमारी प्रेरणा भी है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत कई दशकों से सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करना चाहता था,

0: लेकिन ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि हमारा अगला पड़ाव सेमीकंडक्टर के दूसरे चरण के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जो 6 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है।
1: सेमिकॉन का दूसरा चरण 6 स्तंभों पर सेमीकंडक्टर उद्योग का निर्माण करेगा। पहला स्तंभ डिजाइन है, दूसरा मशीनें और सामग्री, तीसरा स्तंभ अधिक डिस्प्ले, मेमोरी, सिलिकॉन, कंपाउंड और लॉजिक फैब्स, चौथा अधिक उन्नत पैकेजिंग इकाइयों पर और पांचवा स्तंभ अनुसंधान तथा विकास पर केंद्रित है। छठा स्तंभ प्रतिभा से संबंधित है।
0: इस कार्यक्रम में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। अगले महीने की 17 तारीख तक चलने वाले इस सेवा संकल्प अभियान के हिस्से के रूप में पहले दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी मिलने पर चलाए गए संयुक्त आतंकरोधी अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया गया। भारत ने आतंकवादियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों और अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार अलकायदा के बीच सीधा संबंध बताया है। परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनुसूची एच, H1 और X की औषधियों पर नियामक निगरानी को मजबूत करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इन औषधियों को खरीदने के लिए ग्राहकों को वैध पर्चे की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित संशोधन इन औषधियों की अनधिकृत पहुंच और बिक्री से संबंधित खामियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। आओ तुहानू जानकारी दे दईए अज रात तक प्रसारित कीते जाण वाले प्रोग्राम ते उहनां दे प्रसारण समें दी। हुण तो थोड़ी देर बाद 1:10 ते तुसी प्रादेशिक खबरां सुणोगे। सवा 1 बजे तो लैके 2:15 बजे तक प्रोग्राम सुणोगे फौजी वीरां लई। इस विच खबरां अपने निर्धारित समें ते प्रसारित कीतियां जाणगियां। बाद दोपहर 2:30 बजे लोक गीतां दे प्रोग्राम रंगली धरती च अज तुसी निर्मल सिद्धू दे गाए लोक गीत सुणोगे। दूजी सभा विच 4 बजे दियां मुख खबरां तो बाद 4:02 दा समां रहेगा पंजाबी फिल्म संगीत दा। शाम 4:30 बजे तुसी श्री दरबार साहिब अमृतसर तों शब्द कीर्तन दा सीधा प्रसारण सरवण करोगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसीं जगजीवन सिंह तों प्रादेशिक खबरां सुणो। भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई भलके सूबा पद्धरी नशा मुक्त पंजाब यात्रावां शुरू कर रही है। पठानकोट तों शुरू होण वाली यह यात्रा सूबा भर में चार पड़ाव में शुरू की जाएगी। यह सारे 117 विधानसभा हल्कियां दे लोकां नूं लामबंद करेगी अते नशियां विरुद्ध लड़ाई नूं एक विशाल जनतक लहर में बदल देगी। भाजपा के सूबा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने इस 13 दिनों की मुहिम का ऐलान करते हुए कहा है कि पार्टी के कौमी प्रधान नितिन नवीन पठानकोट जिले के माधोपुर के एकता स्थान तो पहली यात्रा को झंडी दिखाएंगे। यह यात्रा 30 सितंबर को जलंधर विखे समाप्त होगी। यह यात्रा पंजाब के सामने तीन बड़ी चुनौतियों से केंद्रित होगी। इन्हों के वधदी नशाखोरी, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के हर पद्धर से भ्रिष्टाचार शामिल है। भाजपा के राष्ट्रीय जनरल सकत्र तरुण चुग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन मौके तो श्री हरिमंदर साहब अमृतसर विखे मत्था टेकया तो उन्हां दी लंबी उम्र चंगी सेहत अते देश दी अगवाई विच भारत दी विश्व पद्धर ते चढ़दी कला दी गुरुचरणां विच अरदास कीती। पत्रकारां नाल गलबात करदिआं उन्होंने दस्सिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सारा जीवन देश दी सेवा अते जन कल्याण लई समर्पित कीता है। तरुण चुग ने आख्या कि श्री मोदी दी मजबूत लीडरशिप हेठ भारत ने 7.8% दी विकास दर हासिल कीती है अते भारत पूरी दुनिया विच आर्थिक तरक्की दा इंजन बन के उभरिआ है। पंजाब के मौजूदा हालातों से मुलाजमान किसानों के मुद्दों बारे पूछे गए सवाल का जवाब देंद्या श्री चुग ने कहा है कि सूबे में इस वेले कानून व्यवस्था की हालत काफ़ी खराब है अते नशे की समस्या गंभीर रूप धारण कर चुकी है जिस नाल पंजाब की पूरी जवानी अते पीढ़ी तबाह हो गई है। उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नशा मुक्त भारत अते नक्सल मुक्त

फौजी वीरों, मेरे वालों यानी दीपाली वधवा वालों, जय हिंद। लैके हाजिर हाँ तुहाडे मनोरंजन लई कुछ हिंदी फिल्मी नगमे। पेश है प्रोग्राम दा पहला गीत टक्कर फिल्म दा। आवाज़ा अभिजीत और अलका याग्निक दियाँ। गीतकार ने माया गोविंद और संगीतकार ने अन्नू मलिक।

लगीत टक्कर फिल्म दा, आवाजां अभिजीत और अलका याग्निक दिया, गीतकार ने माया गोविंद और संगीतकार ने अन्नू मलिक।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा वी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
3: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
1: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
3: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
1: HIV
3: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
2: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।

0: नए इम्कानात पैदा कर रहा है।
1: इसी सितंबर में ही भारत की क्वार्टरली जीडीपी रिपोर्ट आई और इस चैलेंजिंग पीरियड में भी भारत ने 7.8% ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। और इसी दरमियान जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार किया है, अपग्रेड किया है। और ये भी 3 दशक के बाद, करीब 35 साल के बाद हुआ है।
0: वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर सनत के लिए एक पसंदीदा मकाम बनने की खातिर हर मुमकिन इकदाम कर रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया नए और काबिल भरोसा मैन्युफैक्चरिंग मकामात तलाश कर रही है। जनाब मोदी ने उजागर किया कि मोहाली और सूरत में हाल ही में 2 सेमीकंडक्टर प्लांट्स में कमर्शियल पैदावार का आगाज हुआ है। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क के लिए इस मकाम तक पहुंचना आसान नहीं है। अपने खिताब में वजीर आजम ने नई दिल्ली में हाल ही में मुनक़िद हुई ब्रिक्स सरबराह मीटिंग का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने इस सरबराह मीटिंग की कामयाबी के साथ मेजबानी की, जिसमें हर मेंबर मुल्क के इत्तेफाक़ी राय के साथ नई दिल्ली एलामिया मंजूर किया गया। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कई दहाइयों से भारत सेमीकंडक्टर सनत कायम करने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जेर क्यादत ही मुमकिन हो पाया। उन्होंने कहा कि अब बुनियाद कायम कर ली गई है और अगला कदम सेमीकॉन 2.0 के जरिए सनत कायम करना है, जिसमें 6 अहम सतूनों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तकरीबन 200 स्टार्टअप और कंपनियों को भारत में चिप डिजाइन करने के सिलसिले में मदद फराहम करने का निशाना रखा है। सेमीकॉन इंडिया 2026 में 600 से ज्यादा नुमाइशकार, 300 बैनुल अक्वामी कंपनियां और 50 से ज्यादा मुल्कों के मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी ज़िंदगी और खिदमात के 25 बरस मुकम्मल होने के मौके पर आज से बीजेपी के मुल्क की सतह पर एक महातवील सेवा संकल्प अभियान का आगाज़ हो गया है। सेवा संकल्प अभियान जो आइंदा माह की 17 तारीख तक जारी रहेगा, इसका पहला दिन सेवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है, जिसके तहत मुल्क भर में खून अत्या करने के कैंप लगाए जाते हैं। इस मौके पर बाद में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के सदर नितिन नबीन ने कहा कि मुल्क भर से पार्टी वर्कर खून अत्या करने के इन कैंपों में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जेर क्यादत शहरियों की जिंदगी में यकसर तब्दीली आई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी जिंदगी के आज 25 बरस मुकम्मल हुए हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है। आज हम खसूसी सीरीज सेवा संकल्प अभियान के तहत किस तरह दफा 370 की मनसूखी के जरिए एक मुल्क एक आईन के नजरिए को फरोख मिला, इस सिलसिले में रिपोर्ट पेश कर रहे हैं।
1: जम्मू कश्मीर में सही मायने में भारत का संविधान लागू हुआ है और ये सब कुछ साथियों इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको बांटने वाली आर्टिकल 370 की दीवार अब गिर चुकी है।
2: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का यह बयान 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में आईनी तब्दीली की अक्कासी करता है। दफा 370 की मनसूखी से खत्ते में इंतजामी और सियासी तरीक़ेकार में एक अहम तब्दीली की भी अक्कासी होती है। शाहराहों से टनल्स तक और रेलवे पुलों से मुल्क के बकिया हिस्से से बेहतर कनेक्टिविटी तक जम्मू कश्मीर ने बुनियादी ढांचे में खातरख्वाह पेशरफ्त का मुशाहिदा किया है। 2019 के बाद से बुनियादी ढांचे, सियाहत, सरमायाकारी और हुक्मरानी के सिलसिले में नुमाया पेशरफ्त हुई है। मौजूदा हुकूमत इस रफ्तार को बरकरार रखने के लिए मुसलसल काम कर रही है। श्रीनगर से इश्फाक शाह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने आज वजीर आजम को उनके यौम पैदाइश पर मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में सदर जमहूरिया ने गुज़श्ता 25 बरस में जनाब मोदी की गैर मामूली अवामी खिदमात और मुल्क की तामीर में उनके गिरां कद्र तआवुन की सताइश की। नायब सदर ने कहा कि जनाब मोदी की बसीरत अफरोज क़यादत के तहत भारत दुनिया की तेजी से तरक्की करती हुई अहम मईशतों में शामिल है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उनके यौम पैदाइश पर मुबारकबाद दी है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम के आज 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन साल 2023 में इस स्कीम का आगाज किया था, जिसका मकसद 18 मुतालिका तिजारत से मुंसलिक रिवायती फनकारों और दस्तकारों को शुरू से आखिर तक मदद फराहम करना है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: पीएम विश्वकर्मा स्कीम ने एक

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लौना।
1: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
4: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
2: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
4: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, एचआईवी किवें फैलदा है?
2: एचआईवी
4: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, एचआईवी किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
3: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा

जनहित विद जारी। फौजी वीरो पेश कर रही हैं प्रोग्राम दा आखरी गीत बर्फी फिल्म तो लिया। आवाज निखिल पॉल जॉर्ज दी, गीतकार ने स्वानंद किरकिरे और संगीतकार ने प्रीतम।

0: इसका उद्घाटन किया। कहा, भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खोल रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के लिए 200 स्टार्टअप और कंपनियों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का एक माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे। भारत ने अमेरिका में 11 सितंबर के हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को समर्थन देने पर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। और क्रिकेट में भारत आज नई दिल्ली में अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि परिसर में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय ये सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एक ओर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत पर दुनिया का भरोसा भी बढ़ रहा है।
1: दुनिया का भारत पर भरोसा भी बढ़ता जा रहा है। साथियों, इसी भरोसे की एक और बड़ी तस्वीर 3 दिन पहले खत्म हुई ब्रिक्स समिट में दिखाई दी है। भारत ने इस समिट की सफलतापूर्वक मेजबानी की। सबकी सहमति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का एडॉप्ट होना भारत पर विश्व के भरोसे का एक और बड़ा प्रमाण है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत ने 7.8% की विकास दर हासिल की।

0: है। उन्होंने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा गंतव्य बनने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहा है।
1: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर

0: ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग 8 बिलियन डॉलर्स का था, जबकि सेकंड फेज का 13.5 बिलियन डॉलर तक का हमने तय किया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत में निर्मित चिप अब देश के भीतर और दुनिया भर में उपलब्ध हैं। श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमारा अगला पड़ाव सेमीकंडक्टर के दूसरे चरण में के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जो 6 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है।
2: सेमिकॉन का दूसरा चरण 6 स्तंभों पर सेमीकंडक्टर उद्योग का निर्माण करेगा। पहला स्तंभ डिजाइन है, दूसरा मशीनें और सामग्री, तीसरा स्तंभ अधिक डिस्प्ले, मेमोरी, सिलिकॉन, कंपाउंड और लॉजिक फैब्स, चौथा अधिक उन्नत पैकेजिंग इकाइयों पर और पांचवा स्तंभ अनुसंधान तथा विकास पर केंद्रित है। छठा स्तंभ प्रतिभा से संबंधित है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के उद्देश्य से 200 स्टार्टअप और कंपनियों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। अगले महीने की 17 तारीख तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के हिस्से के रूप में पहले दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं, ये आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं अनुच्छेद 370 के संबंध में।
0: जम्मू कश्मीर में सही मायने में भारत का संविधान लागू हुआ है और ये सब कुछ साथियों इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको बांटने वाली आर्टिकल 370 की दीवार अब गिर चुकी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार जम्मू कश्मीर की संवैधानिक तारीख के अब तक के सबसे बड़े फैसले को दर्शाती है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाने से जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे में बड़ा बदलाव आया। सड़क रास्ते हो या रेल नेटवर्क, पर्यटन हो या सुरक्षा, जम्मू कश्मीर में हर क्षेत्र में दिन ब दिन तरक्की और समृद्धि देखने को मिल रही है। इस सिलसिले में हमने सीनियर राजनीतिक विश्लेषक हकीम रोहला गाजी से बात की तो उन्होंने कहा,
5: पिछले 7 सालों से जो नया कश्मीर बना है उस कश्मीर में सुख शांति खुशहाली समृद्धि हर एतबार से हम देखें, खावो पीस हो, टूरिज्म हो, हमारी इकोनॉमी हो, कश्मीर में आए दिन वो हड़तालों का कल्चर वो खत्म हुआ, अब आए दिन हमारे यहाँ फेस्टिवल्स, दिन रात के हमारे टूर्नामेंट्स जो होते हैं, ये सब चीजें खुशहाल कश्मीर देखने को हमें आर्टिकल 370 के हटने से नजर में आया।
4: अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के विकास को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा केंद्रीय सरकार हर संभव कदम उठा रही है, लेकिन जरूरी है कि यहाँ की आवाम भी इन अवसरों का पूरा फायदा उठाए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन और उनके 25 वर्ष की जनसेवा के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। गुजरात का वडनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह नगर है। श्री शाह ने जनसेवा का

0: संदेश फैलाने के लिए वडनगर से वाराणसी तक साइकिल रैली को रवाना किया। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत से सर्वथा स्पष्ट होता है।
1: हमने जो कल्पना रखी है 2047 में पूर्ण विकसित भारत की, वो कल्पना की पूर्ति के लिए अनेक ऐसे युवा चाहिए, अनेक ऐसे किशोर चाहिए, अनेक ऐसे बालक चाहिए जो आने वाली 3 पीढ़ी तक नरेंद्र मोदी के रास्ते पर अपने जीवन को आगे बढ़ाकर भारत प्रथम के मंत्र को सफलता के साथ करे।
0: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से गुजरात के वडनगर के लिए बाइक रैली रवाना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज पूरे पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सोशल मीडिया संदेश में महिलाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
2: आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूँ। घर में हमारी माताओं बहनों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अनेक छोटे बड़े फैसलों के बीच एक महिला हर तरीके से परिवार का ख्याल रखती है।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा की। इस योजना में पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,100 रूपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री को जन्मदिन के अवसर पर देश विदेश से शुभकामनाएं मिल रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर बधाई दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को सशक्त बनाने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। भारत में रूसी दूतावास ने इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का संदेश साझा किया। इस बीच नई दिल्ली स्थित कई दूतावासों और विदेशी राजनयिकों ने प्रधानमंत्री को बधाई दी है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से श्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की। जापान के राजदूत ओनो केइची ने विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन पर मिल रही इन शुभकामनाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक आशीर्वाद देश की जनता की सेवा करने के उनके संकल्प को अधिक दृढ़ बनाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये योजना कारीगरों और शिल्पकारों को व्यापक पैकेज प्रदान करती है।
3: पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत अब तक 30 लाख से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक काम और हुनर से जुड़े विश्वकर्माओं को आगे बढ़ने में मदद करना है। इसके तहत उन्हें आधुनिक औजार, प्रशिक्षण, आसान शर्तों पर ऋण और बाजार से जुड़ने का अवसर दिया जाता है ताकि वे अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। अब तक करीब 24,50,000 विश्वकर्माओं को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं इस योजना के तहत 6 लाख से अधिक विश्वकर्माओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण महज 5% की दर पर उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा 18 लाख से ज्यादा आधुनिक टूल किट भी इंडिया पोस्ट के माध्यम से विश्वकर्माओं के घर पहुंचाए जा चुके हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक हुनर को आधुनिक साधनों से जोड़कर विश्वकर्माओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने आतंकवादियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने

0: पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों और अमरीका में 11 सितंबर के आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार अलकायदा के बीच सीधा संबंध बताया है। श्री हरीश ने आतंकवादियों के साथ साथ उन्हें सहायता, वित्त पोषण, सहयोग और शरण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का आग्रह किया।
1: Draining this swamp that provided an
2: इस दलदल को सुखाना बेहद जरूरी है जिसने 9/11 के साजिशकर्ताओं को पनाह दी। उसके बाद के वर्षों में भी लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे अलकायदा से जुड़े संगठनों को भी मदद करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे पनाह गाहों की निरंतरता को रोकने के लिए एकजुट होना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे और व्यक्ति किसी भी देश या उसके नागरिकों पर ना थोपे जाएं और कोई भी अपने परिवार और प्रियजनों को
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। कहा, भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खोल रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के लिए 200 स्टार्टअप और कंपनियों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का 1 माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, DRM 864 किलोहर्ट्ज, FM 100.8 मेगाहर्ट्ज, FM 100.9 मेगाहर्ट्ज, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज, अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। रंगली धरती प्रोग्राम च आज दे गायक कलाकार ने निर्मल सिद्धू। आओ सुनदे हां इन्हां दी आवाज़ च। प्रोग्राम च सब तो पहले टप्पे।

रंगली धरती प्रोग्राम च हुने तुसी निर्मल सिद्धू दी आवाज़ च टप्पे सुन रहे सी। आओ हुण सुनदे हां इन्हां दी आवाज़ च साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबला वे असां उड़ वे जाना।

प्रोग्राम चल रहे चिट्ठियां मिठियां ते तुसी ट्यून कीता होए या यार पंजाब ते अज है 17 सितंबर ते अज म्यूजिक नू समर्पित भी दिन है कंट्री म्यूजिक दिवस ते एक प्रसिद्ध संगीतक शैली है अमरीका दे विच खास तौर ते इसनू मनाया जांदे लोक संगीत परंपरा दे नाले जुड़ी हुई है गिटार हुंदी है दे विच इन्हां दे विच फीडल हारमोनिका ते इदां दे जिहड़े साज है उहदी वरतों कीती जांदी है ते बहुत कुछ हुंदा है इस म्यूजिक थोड़ी जी होर सांझ बनावांगे अपने स्रोतियां दे नाल ते चिट्ठियां तुहाडियां तुहाडे ही नाल असीं सांझियां कर रहे हां लवेई छत्तीसगढ़ तो गुलाब दास मानकपुरी ते राजा ते राणी मानकपुरी राजा भी है ते राणी भी है इस चिट्ठी दे विच जिस तरह कि कहानियां दे विच भी हुंदा सी ते पिंड हैगा पंगाला जिला फाजिलका कमलदीप गिल गैवी गिल दिलप्रीत एका मोहन ते मिंद्रपाल ते गुरमेल ते बोर सिंह ते राजपुरा तो है चिट्ठी ते पिंड हैगा कहिंदे राजपुरा फाजिलका है इन्हां दा जिला ते तहसील है अबोहर लिख रहे ने हरदीप सिंह जगवीर ज्वाला ते धर्मवीर चोरड़ डॉक्टर धर्मवीर चोरड़ ते जगसीर सिंह धंजू ते कहिंदे सारे पिंड दी पंचायत वी इस चिट्ठी दे विच शामिल है पिंड राजपुरा दी पंचायत ते सहारनपुर तो आशा नरंग ते सुरेश नरंग चिट्ठी लिख रहे ने आदर्श नगर मलोर तो राज शर्मा मीना शर्मा योगेश मेहंदी ते सौरभ ते शाइना ते निवान शर्मा गुरनाम भुल्लर दी खूबसूरत आवाज़

प्रोग्राम चल रहे चिट्ठियां मिठियां ते पिंड आजम वाला तहसील फाजिल का तो चिट्ठी लिख रहे ने सोन सिंह बुक निशान सिंह बुक सीरत कौर किरत कौर ते इन्हां दे दादी जी जसवंत कौर ते राज मिस्त्री पिंड माहुआणा बोतला ढाणी नेड़े अरनी वाला तो लिख रहे ने सुरेंद्र कौर बुक बलविंदर कौर ते इन्हां दी नूह हैगी है जी रीना बाई इस चिट्ठी दे विच इन्हां दे नाल ते सुंदर खेड़ राज माता नगर बुलटाना महाराष्ट्र तो नरेंद्र नरवाड़े ज्योति अका

प्रोग्राम चल रहे चिट्ठियां मिठियां ते तुसी ट्यून कीता होए AIR पंजाब ते बिल्कुल गल्लां जड़ियां हुंदियां हुंदियां सी आपस दे विच आंढणा गवांढणा दियां ओह बढ़िया याद आउंदियां आ कि एक दूजे नू आंढ गवांढ किद्दां सहारा दिंदा हुंदा सी दस दिंदा हुंदा सी कि हुण इदां होणी आ हुण उदां होणी आ ते अपना थोड़ा जिहा ध्यान रखियो ते इदां उदां दे विच मौसम दी वी गल आ जांदी सीगी कि हुण मौसम बदल रहा है ते बदलते मौसम दे विच तुसी अपनी सेहत दा खास तौर ते ध्यान रखो ते इहदे विच असीं स्पैशली गल करांगे कि सर्द गर्म होने का बड़ा ही डर रहिंदा है क्योंकि सवेर शाम नूं स्पैशली जिहड़ा मौसम बदलने लगता है इस महीने दे विच ते दिन भी छोटे होने लग जाते हैं तो इस करके सानू थोड़ी जी रूटीन जिहड़ी है हुण बदल लेनी चाहिए अपनी सेहत के वाल थोड़ा जिहा सानू केयरफुल हो जाना चाहिए ते पिंड हैगे पक्खी खुरद फरीदकोट तो है चिट्ठी सतनाम सिंह गिल गुरिंदर गिल ते गुरलीन ते सारा गिल परिवार ते जिला है उहनां दा फाजिलका पिंड हैगा वाजिदपुर भूमा ते बलजीत सिंह चिट्ठी लिख रहे ते वड़िंग खेड़ा तो भोला सिंह कहिंदे पहली बार चिट्ठी लिखी है जी शामिल करियो ते टाली वाला जट्टा साहब सिंह सुखजीत कौर बलजिंदर हरजिंदर चिट्ठी लिख रहे इन्होंने नेड़े शहर किहड़ा पैंदे उह नहीं दस्सिया जी ते बाड़ियां कलां हुशियारपुर कहिंदे शहर नेड़े आ साडे ते बूटी राम हांडा विनय उमंग ते नीरज हांडा जी की चिट्ठी है ते लिखण वाले ने जी सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो टी डी मल्होत्रा रीतिक प्रतीक ते अनिल शर्मा

प्रोग्राम चल रहे चिट्ठियां मिठियां ते तुसी ट्यून कीता होए AIR पंजाब ते बिल्कुल जिद्दां कि असी पहला गल कीती कि मौसम बदल रहे ते बदलते मौसम दे विच सानू बाहरला खाना खाण तो परहेज़ करना चाहिए है खास तौर पर इस मौसम के विच ते पर असी जे गल करिए बच्चों की बच्चे कहें जी घर के जिहड़ी चीज़ बनी अज जो दाल सब्जी बनी है सानू पसंद नहीं हैगी ते पहले टाइम दे विच की हुंदा सी कहिंदे सांझे परिवार हुंदे सी ते कई घरां दे विच इदां हुंदा सी गवांढियां दे नाल सांझी कंध भी हुंदी सीगी ते कंध उपरों दी एक दूजे नूं चीज़ां फड़ा दित्तियां जांदियां सी वैसे भी आंढ गवांढ नूं दे दित्ती जांदी सी तुहाडे घर जे आ सब्जी बनी आ ते साडे आ बनी आ बच्चों नूं तुसीं आ खिला दिओ ते इदां दा जिहड़ा रिवाज है जे फिर तो तुर पवे मैनूं लगता है कि

0: नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आप करते हैं।
1: आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना दे 3 साल पूरे हो गए ने। इस योजना तहत 30 लाख तो वध लाभपात्रियां दी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। सरकार ने सोशल मीडिया ते वायरल हो रही एक वीडियो दा खंडन कीता है, जिस विच दावा कीता गया कि भारतीय हवाई सेना दा MiG-29 लड़ाकू जहाज पायलट दी गलती कारण लैंडिंग दौरान हादसा ग्रस्त हो गया है। काउंटर इंटेलिजेंस CI अमृतसर ने सीमा पारों तस्करी दे मॉड्यूल नू नाकाम कर दिया। 27 किलो हेरोइन, एक अति आधुनिक विदेशी T-Bore PX, 5 पिस्तौल ते 3 कारतूसा समेत 4 व्यक्तियों नू गिरफ्तार किया है। भारत ते अफगानिस्तान विचकार 3 T20 क्रिकेट मैचां दी लड़ी दा आखरी मैच अज शामी 7:30 बजे नवी दिल्ली विच खेडिया जावेगा। पठानकोट जिले दे खिडारियां ने जॉर्डन दे अमान विच हुई 24वीं एशियन कराटे चैंपियनशिप विच शानदार प्रदर्शन किया। ए सन अज दियां हुण तक दियां मुख खबरां। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.8 MHz, FM 100.9 MHz अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो ते नाल दे नाल न्यूज़ ऑन एयर ऐप दे जरिए भी तुसी आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम सुन सकते हो। साडे स्टूडियो की घड़ी मुताबिक 4:03 ते 45 सैकेंड हो रहे ने। पेश है तुहाडे सारयां दा मनपसंदीदा प्रोग्राम पंजाबी फिल्म संगीत।

0: तेनू चुक ले जावा
1: मैं तेरे हथ नावा
0: मैं तेनू चुक ले जावा
1: मैं तेरे हथ नावा
0: चुक ले जावा
1: हथ नावा
0: चुक ले जावा
1: हथ नावा
0: चुक ले जावा
1: हथ नावा
0: चुक ले जावा।

0: मोनो, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां, स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
1: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
0: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
1: HIV
0: नहीं पता ना, समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
2: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
3: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
3: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा वी खतरा हो सकदा है।
4: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त।

0: साचे ते पवना पया, पवना ते जल होए, जलते त्रिभुवन साजिया, कटकट जोत समोए। ये फरमान अकाल पुरख दी महिमा बयान करता है। सृष्टि दे आरंभ विच कुछ भी नहीं सी, अरबद नरबद तंदुकारा वाली अवस्था सी। अकाल पुरख अपनी अफूर अवस्था विच बैठा होया सी, ना तरत सी, ना आकाश सी, ते ना ही पताल सी, ना दिन सी, ना रात सी, ना चंद्रमा सी, ते ना सूरज सी। बस अकाल पुरख अपनी सुन्न अवस्था विच, भाव शून्य अवस्था विच आसन लाई बैठा सी। अकाल पुरख दी उत्पत्ति तो बाद सच होंद विच आया, उपरंत तिन्ने पवन धरती आकाश ते पताल साजे गए। सृष्टि दी रचना खंडा ब्रह्मंडा दी रचना हुई, कुदरत दी रचना हुई। सृष्टि दे जीव रचे गए, जीव जंत वनस्पत आदि दी रचना हो गई। अकाल पुरख दी सर्वोत्तम कृत अर्थात मनुखा जून होंद विच आई। समय दे परिवर्तन दे नाल नाल मनुखी सुभा दे परिवर्तन दी गल मन्नी जांदी है, क्योंकि चंद सूरज ग्रहां तारियां नक्षत्रां दे परिवर्तन दा मनुखी सुभा उपर डूंगा प्रभाव पैंदा है। जदों सूरज एक रास तों दूजी रास विच जांदा है तां उह क्रांति आउंदी है जिसनूं संक्रांति कहा जांदा है, ते जदों चंद्रमा पूरन हुंदा है तां उसनूं पूरन मास कहा जांदा है। गुरबाणी विच रुत्तां दे परिवर्तन दी गल अते समें दे परिवर्तन दे नाल मनुखी सुभाव उपर इस दे असर दी बात कीती गई है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने तुखारी राग विच श्री बारह मां दी रचना कीती, ते साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने मांझ राग विच श्री बारह मां दी रचना कीती कि किस तरह उस अकाल पुरख दे हुकम विच हर एक परिवर्तन नूं सुखावां बनाउणा है। सरवण करदे हां श्री बारह मां मांझ विचों अज आरंभ होए महीने दा पाठ ते पाठ दी व्याख्या। पाठ ते व्याख्या कीती है ज्ञानी संत सिंह मस्कीन होरा।
1: असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिए हर जाए, मन तन प्यास दर्शन घणी कोई आण मिलावे माए। संत सहाई प्रेम के हों तिनके लागा पाए, विण प्रभ क्यों सुख पाईए दूजी नाई जाए। जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आघाए, आप त्याग बिनती करें लेहो प्रभु लड़लाए। जो हर कंत मिलाइया से विछड़ कदे न जाए, प्रभु मिण दूजा को नहीं नानक हर शरणाए। असु सुखी वसंदया जिना मया हर राय, असु सुखी वसंदया जिना मया हर राय।
2: असु दे महीने दा

संदेश, उपदेश, ये ठंडी मिठी रुत। भादों का दुचित्तापन खत्म हो गया। ठंडी मिठी रुत, प्रेम ठंडा है, प्रेम मिठा है। प्रेम विच गर्माश नहीं, भाव प्रेम विच जलन नहीं, दूजे नू जलाना नहीं, ईर्षा नहीं, द्वेष नहीं, तृष्णा नहीं। इस वास्ते प्रेम ठंडा है, प्रेम रसदायक है। जिसनू रोज रोज याद करिए, याद ही एक दिन प्रेम बन जाती है। जैसे भोजन छक लिए, छकया हुआ भोजन कुछ समय बाद पच के रस बन के खून बन जाता है। जो रगां दे गर्दिश करता है, शरीर दे जो गर्दिश करता है खून, वो पहले भोजन सी। खादा हुआ भोजन कुछ समय बाद पच के रस बन के खून बन जाता है और नसां विच दौड़दा है। बार बार जिसनू याद करिए, जिसका सिमरन करिए, जिसनू चेते करिए, एक दिन सिमरन ही प्रेम बन जाता है, एक दिन याद ही प्यार बन जाती है। और फिर प्यार दा धागा फिर टुटदा ने, हर वक्त ओ प्रेम दी तार अंदर बनी रहती है। अस्सू दा महीना उस जीव स्त्री दा समझ लो जिस दे अंदर प्रेम दी उमंग पैदा हो गई है, तरंग पैदा हो गई है। ये इस तरह है जिवें खादा होया भोजन वाकई खून बन गया। कई दफा कई लोग खांदे पींदे ते बहुत ने, पर खून नहीं बनता। और ऐसे वैद आचार्य भी कहिंदे ने शरीर दे च नुक्स है कि खांदा पींदा सब कुछ है पर खून नहीं बनता। कई लोग सत्संग करदे ने, बाणी पढ़दे ने, जप तप करदे ने, पर उन्हां दे अंदर प्यार नहीं पैदा हुंदा, प्रेम नहीं पैदा हुंदा। लाजमी कुछ मानसिक खराबी है, शरीर दे च कुछ नुक्स होवे तो खादा होया भोजन खून नहीं बनता। मन विच प्रबल नुक्स होवे तो कीता होया जप, कीता होया तप प्रेम नहीं बनता। इलाज है शरीर नू ठीक रखण दा, ताकि खादा होया भोजन खून बन सके। सत्संग इस वास्ते है कि मन विचों सारियां खराबियां, सारे विकार निकलन, ताकि कीता होया जप, कीती हुई याद प्रेम बन सके। और प्रेम अस्सू दा महीना है, ठंडा मिठा महीना है। अस्सुन प्रेम उमाहड़ा, क्यों मिलिए हर जाए। अस्सू दा महीना मन दिच चाव पैदा हो गए, उमंग पैदा हो गई, हरी किवें मिले, हरी किवें मिले। जिस दे लई प्यार पैदा हो जाए, बार बार मन उसनों मिलन नू लोचदा है, उदे दर्शना नू लोचदा है। मन तन प्यास दर्शन घणी, कोई आन मिलावे माए। हुण तन मन दिच सिर्फ इको ही दर्शना दी प्यास है और बहुत है, हे मां कोई भी आण के मिलावे। स्वभावक मां दा रिश्ता ही ऐसा है, कोई गहरी चोट लग जाए मुंह मां निकल जाता है, कोई गहरी खुशी प्राप्त हो जाए हृदय च होक मां दी निकलती है। कोई इस ढंग दा यह संबंध है। तो प्रेम दी इतनी वड्डी घटना घट जाए ते मां चेते ना आवे, ऐसा हो नहीं सकदा, ऐसा हो नहीं सकदा। हे मां कोई आण के मिलावे, जिस दे लई इतना प्रेम पैदा हो गया, दर्शना दी चाहत पैदा हो गई है। संत सहाई प्रेम के, औं तिनके लागा पाए। प्रेमियां दे मददगार ने कौन? गुरु। प्रेमियां दे मददगार ने कौन? संत जन। मैं उन्हां दे पैरी पैना, क्यों? क्यों मेरे प्रेम नू कोई दिशा दे सकदे ने, वो मेरे प्रेम नू मार्ग दे सकदे ने, ताकि मेरा प्रेम परमात्मा दे दर्शन कराण दे सफल हो सके, सहायक हो सके। इतनी गल ते स्पष्ट है कि प्रेम तो बिना हिरदे दी शुद्धि नहीं होंदी। बड़े तो बड़े दानियां दे मन भी मैले रहिंदे ने, बड़े तो बड़े ज्ञानियां दे मन भी मैले रहिंदे ने, वड्डी तो वड्डी सेवा करन वालियां दे चित भी कठोर बने रहिंदे ने। लेकिन जिस हिरदे च प्रेम पैदा हो गया और जिस दे प्रति प्रेम पैदा हो गया, वो हिरदा शुद्ध हो जाता है, वो हिरदा पावन हो जाता है। जिस नाल प्रेम है उस नाल छल करना बहुत औखा है, जिस नाल प्रेम है उसनों धोखा देना बहुत औखा है, जिस नाल प्रेम है उस नाल कपट करना बड़ा औखा है। ते परमात्मा दा प्रेम ते समूह ब्रह्मंड

0: विशाल प्रेम है, पूर्ण पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे व्रत गोर मड़ी मठ भूल न माने। वो खालिस है, वो शुद्ध है, वो पावन है, जिस दे अंदर पूर्ण ब्रह्मंड दा प्रेम पैदा हो गया, वो ब्रह्मंड दे प्रति दयालु हो जाएगा, वो ब्रह्मंड दे प्रति सेवा भाव नाल देखेगा, वो ब्रह्मंड दे किसे नाल भी छल ते कपट नहीं कर सकेगा, क्योंकि उस दे अंदर प्रेम पैदा हो गया है, प्यार पैदा हो गया है। प्रेम ही हृदय नु शुद्ध कर देंदा है, पावन कर देंदा है, और प्रेम दी इस सुरत नु, प्रेम दे इस धागे नु संत जन परमात्मा तक ले जाण विच सहायक ने, मददगार ने। बिन प्रभ क्यों सुख पाईए, दूजी ना ही जाए। परमात्मा तो बिना परम आनंद दी प्राप्ति कित्थों होवे, दूजी होर कोई थां ही नहीं है। जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आगाए। प्रेम एक ऐसा रस है, जिन्होंने भी चख लिया उन्होंने हिरदे विच भुख नहीं रहिंदी, सदा हिरदे तृप्त रहिंदे ने, रजे हुए रहिंदे ने। आप त्याग बिनती करें लेहु प्रभु लड़ लाए। प्रेम नाल भिजे हिरदे किस तरह जीवदे ने, इस तरह दियां जीव इस्त्रियां हर वक्त बेनती दे जीवदियां ने, अरदास ते जोरी दे जीवदियां ने। ए प्रभु तू अपने लड़ ला ले, अपने नाल जोड़ ले। जो हर कंत मिलाइया से विछड़ कते ना जाए। जिन्हां नूं परिपूर्ण परमात्मा ने अपने नाल मिला लिया है, जोड़ लिया है, वह फिर कदी बिछड़दे नहीं। संसार विच मित्र मिले है बिछड़ सकता है, पुत्र मिले है बिछड़ जाएगा, परिवार मिले है बिछड़ जाएगा, धन संपदा मिली है बिछड़ जाएगी, सब कुछ बिछड़ जाता है। पर मिलिया होए ना बिछड़े, जे मिलिया होई, जे कृपा परमात्मा मिल जाए, प्रभु मिल जाए, फिर विछोड़ा है ही नहीं, से विछड़ कते ना जाए। प्रभु विण दूजा को नहीं नानक हर सरनाए। जो मिल के कदी विछड़े ना, परमात्मा तो बिना होर कोई भी नहीं, होर कोई भी नहीं। असु सुखी वसंदया जिना मया हर राय। असु दा महीना उना लई सुखमई होंदा है, जिन्हां दे मन असू दे महीने दी तरह ने, वो सुखमई ने, और उन्हां दे ते हर वक्त प्रभु दी कृपा बनी रहिंदी है, हर वक्त परमात्मा दी मेहर बनी रहिंदी है, वो बख्शिश दे पात्र बने रहिंदे ने, प्रेम नाल तृप्त रहिंदे ने, प्रेम नाल ठंडे रहिंदे ने, और सरबत दे भले विच जीवदे ने, सरबत दा भला मंगदे ही रहिंदे।
1: आप जी सरवण कर रहे सो श्री 12वां मांझ विचों इस महीने दा पाठ ते पाठ दी व्याख्या। पाठ ते व्याख्या कीती सी ज्ञानी संत सिंह मस्कीन होरा। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी अपने उच्चारित एक शब्द विच फरमाउंदे ने कि सच्चे सुख दी प्राप्ति वास्ते उस प्रभु दा नाम जपना चाहिदा है। जेड़े वडभागे प्राणी उस प्रभु दा नाम जपदे ने, उना उत्ते ग्रहां दा कोई असर नहीं हुंदा, क्योंकि उना नूं सब तो उत्तम प्रभु दा नाम प्राप्त हो जांदा है। उह फिर शगन ते अपशगन दे विचार भी नहीं करदे, बस उस अकाल पुरख दी कीर्ति ही करदे ने ते आनंद विच विचरदे ने। सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ, गरह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ। सरवण करदे हां भाई बख्शीश सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ गरह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ। आप जी सरवण कर रहे सो भाई बख्शीश सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वालों गायन किया होया ये शब्द। अकाल पुरख प्रभु का नाम सुखदायक अते कल्याणकारी है, इसे करके ता हिदायत है। हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो नाम गोविंद का सदा लीजै। मिटह कमाणे पाप चिराणे साध संगत मिल मुआ जी जै। पर इस नाम ता ही जपया जा सकदा है जिकर पखंड आदि छड़ के मन कपट तो रहत हो जावे। ताही नता प्रति उस अकाल पुरख प्रभु दा नाम लिया जा सकता है। रामकली कर दूजा सुरलेख अधीन उचारे गए शब्द विच भगत नामदेव जी इस तत् की प्रोढ़ता करते ने सुनदे हैं।

0: जसजीत कौर होरां पासों वार्ता हर का नाम नित नितह लीजै।
1: ए पंक्ति रामकली राग विच भगत नाम देव जी दे मुखार बिंतो उच्चारण कीती जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन पवित्र अंग 973 ते सुभाए मान है। आज तो सवा 700 साल पहले दे समय दे आम लोकां दियां नजरां विच पावे भगत नाम देव जी छींबे हन पर उना दे प्रभु प्यार ते उस विच अगाध निश्चे वाली पावना सदका ओ अकाल पुरख नाल प्यार करन वाले जीवा दे दिला दे राजे ते हिरदिया दी तड़कन मन्ने जांदे हन। गुरु रामदास जी इना दे प्रभु प्रेम दी उच्चता ते आधार ते उना बारे बचन करदे हन। नाम दियो प्रीत लगी हर सेती लोक छीपा कहे बुलाए खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोड़े हर नाम दियो मुख लाए। गुरु अर्जन देव जी भी फरमाउंदे हन कि भगत नाम देव जी दा मन हर वेले परमात्मा नाल जुड़िया रहिंदा है इस बरकत नाल कि उसनू किसी दी मुथाजी नहीं रही। गोबिंद गोबिंद गोबिंद संग नाम दियो मन लीना आड़ दाम को छिपरो होयो लाखीना। भगत नाम देव जी दे काठ शब्द 18 रागा विच गुरु ग्रंथ साहिब जी विच दर्ज हन। विचार अधीन पंक्ति विच भगत जी सारी मनुखता नू समझा रहे हन कि परमात्मा दा नाम सदा जपना चाहिदा है। बानी विच वद तो वद जोर अकाल पुरख नाल अभेदता प्राप्त करन उत्ते दिता गया है ते इस खातर जो मार्ग दस्या गया है उस दा नाम है नाम जपना। रामकली राग विच पन्ने पातशाह नाम दी महिमा इस तरह बयान करदे हन। सोई सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला नाम जपंदड़ी लाली पंद जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुरदर्शन देख निहाली। भगत नाम देव जी आसा राग विच फरमाउंदे हन कि उना दा मन कपड़ा मिनन वाला गज ते जीभ कैंची बन गई है। उना नू किसी उच्ची नीवी जाति जा गोत दी परवाह नहीं क्योंकि ओ दिन रात परमात्मा दा नाम सिमरदे हन। इस शरीर मट्टी विच उना ने अपने आपनो नाम रंग नाल रंगिया होया है ते नाम दी सियून लाई होई है। नाम तो बिना ओ एक कड़ी भी नहीं रह सकदे। ओ हरी दे गुण गा गा के अठे पहर अपने खसम प्रभु नू याद करदे रहंदे हन। उना दा मन प्रभु दे नाल सीता गया है। उना नू सोने दी सुई मिली है जिस दी बरकत नाल उना दा मन शुद्ध निर्मल हो गया है। मन मेरो गज जेबा मेरी काती मप मप काटो जम की फासी कहा करो जाती कह करो पाती राम को नाम जपो दिन राती रांगन रागो सीवन सीवो राम नाम बिन करी न जीवो भगत करो हर के गुन गावो आठ पहर अपना खसम ते आवो सोने की सुई रूपे का तागा नामे का चित हर स्यों लागा। सवाल पैदा हुंदा है कि ए नाम कदों जपना है ता जवाब है हर का नाम नित निते लीजे। संखेप विच एही कहा जा सकता है कि विचार अधीन पंक्ति विच भगत नाम देव जी मन नू समझा रहे हन हे पखंडी मन कपट ना कर छड़ दे ए कपट करना हमेशा उस हरी परमात्मा वाहिगुरु दा सिमरन करया कर उसनू याद करया कर उसकी बंदगी करया कर उसनू चेते करया कर उसदा शुकराना करया कर। छोड़ छोड़ रे पाखंडी मन कपट ना कीजे हर का नाम नित निते लीजे।
0: हर का नाम नित निते लीजे। ए वार्ता सुना रहे सन जसजीत कौर। अकाल पुरख परमेश्वर दा नाम जपना उसकी सिफतो सलाह करनी उसके गुण गायन करना यह सब कुछ उस अकाल पुरख की कृपा ते ही आधारित है। उही ऐसा सबब बना सकता है तांते फिर बेनती करनी चाहिदी है से संजोग करो मेरे प्यारे जित रसना हर नाम उचारे। सरवण करदे हां भाई भगवंत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गाए।

तेह संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे। इस शब्द गायन कीता सी पाई भगवंत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में उन्होंने देश को वैश्विक विनिर्माण चुनौतियों का सामना करने के लिए विश्वसनीय और तैयार केंद्र बताया। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों को बढ़ावा देने पर काम किया जाएगा। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम में एक प्रेस वार्ता में श्री वैष्णव ने कहा कि कई बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि एक कंपनी ने आज भारत में $5 अरब के निवेश की घोषणा की है और कई अन्य कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार वर्षा और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। विकसित भारत जी ग्राम जी योजना विकसित गांव के निर्माण में कैसे योगदान दे सकती है, इसका पता लगाने का निर्देश दिया है। एक कार्यशाला में श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक उपयोग में आए और गांवों को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने में सहायक हो। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। इससे शिक्षकों को बच्चों को और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों को और उपहारों की नई नीलामी प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। ऑनलाइन नीलामी pmmementos.gov.in पर 31 अक्टूबर तक चलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत भूटान की प्रगति और समृद्धि के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री ने श्री तोबगे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ई वाहन और सतत परिवहन की दिशा में भूटान को सहयोग कर रहा है। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी पर आधारित संयुक्त आतंकरोधी अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया गया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7:30 से नई दिल्ली में खेला जाएगा। भारत पहले ही 2 मुकाबले जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम

शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम जाज सुनोगे कम दियां गल्ला, किसान मेले बारे रिपोर्ट सुनोगे। इस तो अलावा गीत संगीत, मौसम दा हाल ते कल दे प्रोग्राम बारे जानकारी दित्ती जाएगी।

0: स्पॉन्सर प्रोग्राम किसान वाणी सुनोगे शाम 7 बजे। इस प्रोग्राम सुनोगे खेती संदेश, किसान समाचार, मौसम दा हाल, मंडियां दे भाव, हिहा समकालीन करना ते गलबात करनगे डॉक्टर नरिंदर सिंह। गजलां दा प्रोग्राम आपशार सुनोगे 7:45 ते। अज दिल्ली केंद्र तो सुनोगे जापान च होण वालियां एशियन खेडां 2026 ते आधारित विशेष प्रोग्राम चेयर फॉर भारत दा समा रहेगा रात 8 बजे। शास्त्री प्रोग्राम सुर साधना च अज सुनोगे सितार वादन ते राग किरवानी। कलाकार होणगे डॉक्टर ज्योति मित्तू। तबले ते संगत करनगे जगमोहन सिंह। सरगम प्रोग्राम होएगा रात 10:30। 6:20 ते सुनोगे प्रादेशिक खबरां। 7:30 होणगियां पंजाबी च खबरां। रात 8:45 ते दिल्ली केंद्र तो सुनोगे समाचार संध्या। 9 बजे न्यूज़ एट 9, 9:15 स्पॉटलाइट, 9:30 कंट्री वाइड, 9:45 ते इनसाइट। रात 11 बजे सुनोगे हिंदी समाचार, 11:05 ते अंग्रेजी समाचार। एसी अज रात तक प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा दा वीरवा ते उन्हां दा प्रसारण समा।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
3: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं, आप सुनते हैं देश का आन।

0: से बालोबाल सोकरी में किसान मेला के बीच आँखों का कैंप लगाया गया है, ब्लड की कैंप लगाया गया है और सारे लोगों को यहाँ पर में वो सुविधा अवेलेबल हो रहा है जो सुविधा हम एक हॉस्पिटल में जाकर के 500,000 लगाते हैं, लेकिन यहाँ किसान मेला को देखते हुए, निगाह में रखते हुए लोगों को फ़ायदा के लिए मात्र 20 रुपया में सारी जाँच हो रही है। साथ में आँखों का टेस्ट हो रहा है, जो आँखों का टेस्ट के लिए मैं हम लोग डॉक्टर का जो एक फीस होता है हॉस्पिटल में 100-500 वो यहाँ पर फ्री किया गया है। लोगों का आँख फ्री में जांच हो रहा है, फ्री में दवाइयाँ दिया जा रहा है, फ्री में चश्मा दिया जा रहा है। ठीक है, इसी के लिए हम लोग आए हुए हैं गुरुसेवा नर्सिंग कॉलेज से। मैं राय हॉस्पिटल में डेली बैठता हूँ 9 बजे से 5 बजे तक और यहाँ पर मैं आज हमें ड्यूटी मिला है लोगों की सेवा करने के लिए, किसान भाई की सेवा करने के लिए, क्योंकि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा लोग काम कैसे कर पाएंगे। इसलिए लोग जितने ही किसान बोलो अपने सामान में बिजी है उससे ही ज़्यादा लोग आके यहाँ अपना आँख नाक कान ब्लड जांच सारी जांच करवाए रहे हैं।
1: कमल शर्मा जी रिपोर्ट सुनी?
2: हाँ जी।
1: ते कुछ बोल भी सुनाने हैं तुहानू मनोरंजन लई।
2: बिल्कुल बिल्कुल सुनाओ जी।

0: आनंद बजिया जी गीत।
1: बहुत जी बहुत मज़ा आ गया पूरा जी। प्रिंसिपल साहब फिर कल दे प्रोग्राम ते मौसम दी हाल बयानी तां दसो की है।
0: कल दे प्रोग्राम सवेरे 6:30 बजे खेतीबाड़ी प्रोग्राम च लसन दी बिजाई बारे जानकारी दित्ती जाएगी।
1: ठीक है
0: शाम 6:30 बजे किसान मेले ते आधारित रेडियो रिपोर्ट सुनोगे
1: बिल्कुल।
0: ते मौसम बारे जानकारी ये है जी, पंजाब च किते किते दरमियानी बारिश होएगी।
1: बिल्कुल
0: ते की कहंदे हो जी?
1: चलिए जी
0: चलो जी, जय हिंद, जै हिंद।

0: प्रोग्राम किसान वाणी दे प्रायोजक ने खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय भारत सरकार।
1: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
2: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए,
3: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं,
4: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
0: हर जोखिम का दावा, घट्टो घट प्रीमियम ते वधेरे भुगतान का वादा। नजदीकी कृषि दफ्तर, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकारित बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र विच अपनी इच्छा नाल रजिस्ट्रेशन करवा सकते। प्रधानमंत्री फसल बीमा

0: नई नहीं बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 854 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज़, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़, एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी अमृतसर अते डीटीआई दी आकाशवाणी पंजाब सेवादाई जलंधर केंद्री। शाम दे 7:30 हो रहे ने, सुनदे आ पंजाबी च खबरां।
3: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया नूं नवें अते भरोसेमंद निर्माण केंद्रां दी लोड़ है अते भारत इस लोड़ नूं पूरा करन लई तैयारी कर रहा है। देहाती विकास खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए ने कि वो इस गल का पता लाउण कि विकसित भारत जी राम जी योजना विकसित पिंडां दे निर्माण विच किवें योगदान पा सकती है। इस साल अगस्त विच भारत की कपड़ा बरामद वध के 29,700 करोड़ रुपए तो वध हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सैकेंडरी सिक्ख्या बोर्ड तो 6वीं जमात के विद्यार्थियों लई लाजमी त्रै भाषा नीति 2027 के अकादमिक सैशन तो लागू करन ते विचार करन लई कहा है। ते भारत ते अफगानिस्तान विचकार 3 T20 क्रिकेट मैचों की अंतरराष्ट्रीय लड़ी का आखिरी मैच नवी दिल्ली विच खेडिया जा रहा है। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया नूं नवें अते भरोसेमंद निर्माण केंद्रां दी लोड़ है अते भारत इस लोड़ नूं पूरा करन लई तैयारी कर रहा है। अज नवी दिल्ली के यशो भूमि विखे सैमीकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करदे श्री मोदी ने देश नूं आलमी निर्माण चुनौतियों का सामना करने लई एक भरोसेमंद अते तैयार केंद्र दस्सिया। श्री मोदी ने कहा कि एक पासे भारत की आर्थिकता वध रही है अते दूजे पासे भारत विच विश्वव्यापी भरोसा भी वध रहा है। उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण विश्वव्यापी माहौल के बावजूद भारत ने 7.8% की विकास दर हासिल की है।
4: इसी सितंबर में ही भारत की क्वार्टरली जीडीपी रिपोर्ट आई और इस चैलेंजिंग पीरियड में भी भारत ने 7.8% ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। और इसी दरमियान जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार किया है, अपग्रेड किया है। और ये भी 3 दशक के बाद, करीब 35 साल के बाद हुआ है।
3: मोदी ने कहा कि देश का हर नागरिक एक विकसित भारत बनाने के संकल्प नाल काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का सैमीकंडक्टर इकोसिस्टम तेजी नाल फैल रहा है अते ये नवीनता निवेश अते विकास लई नवे मौके पैदा कर रहा है।
4: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
3: श्री मोदी ने कहा कि भारत में बनिया चिप्स हुण देश के अंदर ते दुनिया भर में उपलब्ध ने। श्री मोदी ने इस गल ते जोर दिता कि हाल ही में मोहाली ते सूरत में 2 सैमीकंडक्टर प्लांटों में व्यापारक उत्पादन शुरू होया है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश लई इस पड़ा तक पहुँचना आसान नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया सैमीकंडक्टर मिशन 2.0 तहत बजट राशि नूं पहले पड़ा दे 8 अरब अमरीकी डालर तो वधा के 13.5 अरब अमरीकी डालर कर दिता गया है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने नवी दिल्ली में हाल ही में हुए ब्रिक्स सम्मेलन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत ने इस सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की जिस विच हरेक मैंबर देश की सहमति नाल नवी दिल्ली ऐलाननामा अपनाया गया। श्री मोदी ने कहा कि यह भारत में दुनिया के भरोसे का एक होर वड्डा सबूत है। इलैक्ट्रॉनिक्स ते सूचना तकनोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत दहाकियां तो एक सैमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने की कोशिश कर रहा है पर यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही संभव होया। उन्होंने कहा कि हुण नींह रखी जा चुकी है ते अगला कदम सैमीकंडक्टर 2.0 राही निर्माण नूं उत्साहित करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने भारत में वख-वख सैमीकंडक्टर लोड़ां नूं पूरा करने लई चिप डिजाइन करने लई 200 स्टार्टअप्स अते कंपनियां का समर्थन करने का टीचा रखा है। देहाती विकास खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश

जाता है। स्टफ बहुत सब फिल्में बहुत टफ है। फरीदा खानम दी आवाज़ से सुन रहे सी ये गज़ल। अगली आवाज़ दिती है जगजीत सिंह ने।

हुण तुसीं सुन रहे सी आबशार प्रोग्राम च जगजीत सिंह दी आवाज़ दे विच खूबसूरत गज़ल। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। रात दे 8 बजन वाले ने हुणे तो कुछ ही पला बाद तुसीं सुनो।

दिल्ली केंद्र तो जापान च होने वाली एशियन खेडां दा 2026 दे आधारित विशेष प्रोग्राम चीयर फॉर भारत दा सीधा प्रसारण बस कुछ ही पलां च।

0: एक मैदान, एक ट्रैक, एक कोर्ट, एक मैट और करोड़ों दिलों की धड़कन। जब तिरंगा एशिया के सबसे बड़े खेल मंच पर लहराता है तो मुकाबला सिर्फ पदक का नहीं होता, मुकाबला होता है हौसले का, तैयारी का और उस विश्वास का जो एक खिलाड़ी के कदमों से निकलकर पूरे देश तक पहुंचता है। आईची नागोया बनेगा एशिया के खेल ऊर्जा का केंद्र और भारत एक बार फिर तैयार है पिछले एशियन गेम्स में 107 पदकों का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। अब बारी है उस प्रदर्शन को आगे ले जाने की। इस बार ट्रैक पर रफ्तार होगी, क्रिकेट में चौके छक्कों की गूंज होगी, हॉकी में स्टिक और गोल के बीच जंग होगी, कबड्डी के मैट पर सांसें थमेंगी, बैडमिंटन में हर स्मैश उम्मीद जगाएगा, वेटलिफ्टिंग में हर किलो ताकत की कहानी लिखेगा और टेबल टेनिस की छोटी सी गेंद पर भारत की बड़ी उम्मीदें टिकी होंगी। ये है एशियन गेम्स 2026 पर विशेष कार्यक्रम चीयर फॉर भारत। आकाशवाणी पर एशियन गेम्स स्पेशल सीरीज में आज बात होगी उन खेलों की जहां भारत के पास पिछली कामयाबी का अनुभव और इस बार है नए चैंपियन का जुनून। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज के इस आधे घंटे के विशेष एपिसोड में हम जिन खेलों पर विस्तार से चर्चा करेंगे उनमें एथलेटिक्स, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, बैडमिंटन, वेटलिफ्टिंग और टेबल टेनिस प्रमुख हैं। हम जानेंगे कि पिछले एशियन गेम्स में इन खेलों में हमारी क्या स्थिति थी, हमने कौन से पदक जीते थे और इस बार किन दिग्गजों और युवा सितारों से देश को उम्मीदें हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो बेहद खास मेहमान, जानी मानी खेल पत्रकार मोना पार्थ सारथी और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मीडिया सलाहकार सायंतन मोइत्रो। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया।
2: थैंक यू सो मच।
0: शुरुआत करते हैं खेलों की रानी कहे जाने वाले एथलेटिक्स से। पिछले एशियन गेम्स में भारत का एथलेटिक्स में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था जहां हमने 6 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांस्य मिलाकर कुल 29 पदक अपने नाम किए थे। मोना, आपके साथ शुरुआत करते हैं। नीरज चोपड़ा इस बार नहीं है, पिछले बार स्वर्ण पदक उनके नाम था। पारुल चौधरी की ऐतिहासिक दौड़ थी, तेजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉटपुट में गोल्ड जीता और पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम का भी रिकॉर्ड प्रदर्शन था। नीरज के ना होने से आकर्षण थोड़ा फीका जरूर हुआ है, लेकिन किन खिलाड़ियों को आप मानती हैं कि यहाँ से पदक आ सकता है?
1: बिल्कुल, नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में एक ऐसा नाम बन चुके हैं कि जब वो मैदान पर उतरते हैं तो लगता है कि एशियाई खेलों में तो स्वर्ण पक्का माना जा रहा था और लगातार उनके प्रदर्शन में जो निरंतरता रही है और एक जो स्टारडम है उनका, तो एक आम आदमी के मन में भी रहता है कि अच्छा नीरज चोपड़ा का मुकाबला कब है। देर रात दोहा डायमंड लीग या बाहर जब भी वो खेलते हैं देर रात रात तक लोग जागकर उनके मुकाबले देखते हैं। तो अगर उस हिसाब से देखें तो एथलेटिक्स का जो सबसे बड़ा स्टार है वो नहीं है, लेकिन भारतीय एथलेटिक्स दल काफी बड़ा है 74 खिलाड़ियों का, जिसमें अविनाश साबले हो या पारुल चौधरी हो या तेजिंदर पाल सिंह तूर हो, जिनके आपने नाम लिए, वो डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर जा रहे हैं और एक बार फिर उम्मीद उनसे होगी कि वो स्वर्ण पदक जीतकर उस पदक को बरकरार रखकर लौटें। जैसे अविनाश साबले हैं, स्टीपल चेस में हमारे बहुत बड़ी पदक उम्मीद है, पारुल चौधरी है, 5000 मीटर में गोल्ड जीता था, 3000 में रजत पदक जीता था, इस बार भी वो 1500, 3000 और 5000 में उतरेंगी तो उनसे उम्मीद होगी कि वो जहां उन्होंने गोल्ड जीता है उसे बरकरार रखें और दूसरा पदक का रंग बेहतर करें। जेवलिन में नीरज की गैर मौजूदगी में यशवीर होंगे और रोहित यादव होंगे, जिनसे भी उम्मीद होगी क्योंकि जेवलिन भारत में एक फिनोमिना बन चुका है, तो उम्मीद होगी कि वो नीरज से प्रेरणा लेकर कम से कम पोडियम पर खड़े हो सके। पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम हमेशा भारत की मजबूत दावेदार रही है पदक की। ज्योति याराजी वापसी करेंगे।

0: राष्ट्रमंडल खेलों में वो भाग रही थी, 110 मीटर बाधा दौड़ में उन पर भी नजरें होंगी, लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर होंगे जिन्होंने 2023 में रजत पदक जीता था और ग्लासगो में भी वो रजत पदक जीत कर आए हैं। इनके अलावा गुरिंदर वीर है 100 मीटर और रिले टीम में भी वो है, अनिमेश कुजूर 100 मीटर 200 मीटर, गुलवीर है जो पिछले कुछ अरसे से काफी अच्छा उनका लगातार प्रदर्शन रहा है, तो 1500 5000 और 10000 मीटर में उन पर नजरें होंगी। प्रवीण चित्रावेल है जो त्रिकूद में भारत के पदक के दावेदार होंगे, डेकाथलन में तेजस्विन शंकर है और एनसी सोजन जो लॉन्ग जंप में है, तो काफी सारा स्टार पावर है भारत के पास और मुझे लगता है कि पिछले प्रदर्शन को अगर बेहतर नहीं कर सके तो दोहरा तो जरूर सकेंगे।
1: सायंथन, जब भी बात एथलेटिक्स की होती है तो चर्चा होती है कि किस तरीके की सुविधाएं खिलाड़ियों को मुहैया कराई जा रही हैं। हमने देखा कि एशियन गेम्स के पहले बहुत सारी सीरीज का आयोजन किया गया, चर्चा ये भी है कि एशियन गेम्स में रहने की व्यवस्था थोड़ी अलग है, तो पटियाला का जो साई सेंटर है वहां पर कुछ उस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए खिलाड़ियों के लिए ताकि उन्हें वहां जाकर कुछ नया अनुभव न हो, वो पहले से कंफर्टेबल हो सकें। थोड़ा जो भारत सरकार का खेल मंत्रालय है और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, किस तरह की सुविधाएं प्रदान की पिछले कुछ समय में इस एशियन गेम्स को ध्यान में रखकर, उसके बारे में बताएं।
2: पहली बात तो देखिए, आपने पटियाला की जिक्र की, पटियाला के साथ बैंगलोर भी हम लोग शिपिंग कंटेनर्स जो है जो जापान के आइची नगोया में होने वाले जहाँ पे एथलीट्स के एकोमोडेशन होंगे, तो उसका व्यवस्था उसका एक्लमेटाइज करने के लिए खेल मंत्रालय ने पहले से सोच के रखा था। और जब शिपिंग कंटेनर्स की बात किया जाएगा, छोटे से सबको लगता है कि क्लॉस्ट्रोफ्रोबिक है, सफोकेट होंगे, ये होंगे, छोटे से रूम है तो, लेकिन बात यह है कि हमारे सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट एथलीट्स जो है हाइट के हिसाब से वेट के हिसाब से वो है तजिंदर पाल तूर जी, लेकिन 40x8 जो हमने बेड्स बनाए, उन्होंने बताया कि मेरे को ये हॉस्टल के दिन याद आ जाते हैं। ये जो एडजस्टमेंट का एक्लोमेटाइज करने का ये व्यवस्था लिया गया खेल मंत्रालय से, ये उनको वहां जाकर कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर, कोई फिजिकल प्रेशर ना अपनाना पड़े, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है एंड एथलीट्स आर वेरी हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे। तो बेसिकली ये हमें और भी वो आगे जाने वाले जो प्रेशर होने वाले उससे काफी बचा रहे।
1: मुना, आपने कई खिलाड़ियों की चर्चा की एथलेटिक्स में, ट्रैक एंड फील्ड की जिनसे काफी उम्मीद है, सर्वेश कुशारे भी एक एथलीट हैं जो हाई जंप में हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीत कर आए हैं। हैमर थ्रो में अगर बात करें तो तानिया चौधरी हैं जिन्होंने एशियन गेम्स से ठीक पहले 68.35 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। कुछ बड़े नामों के अलावा कुछ उन नामों के बारे में भी बताइए जिनसे उम्मीदें हैं और जो छुपा रुस्तम भी साबित हो सकते हैं।
0: देखिए, सबसे जैसे सायंतन ने अभी बताया कि जिस तरीके से खिलाड़ियों का पूल निकल कर आ रहा है, हर एक टूर्नामेंट में एक नया पूल हमारे सामने आता है और उसके लिए खेलो इंडिया से जो हमारे एथलीट्स निकल कर आते हैं, तो मुझे लगता है कि इन एशियाई खेलों में भी जो जाने माने नाम हैं उनके अलावा कई नए खिलाड़ी हमें देखने को मिलेंगे, कई नए पदक विजेता हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि दो दिन पहले ही जो टॉप्स के सीईओ हैं एनएस जोहल वो बता रहे थे कि जो हमारा कंटिंजेंट है उसमें मैक्सिमम जो है वो डेब्यूटेंट्स हैं इन खेलों में, 500 का जो दल है उसमें 300 खिलाड़ी डेब्यूटेंट्स हैं वर्ल्ड कप पे, तो आप इससे खुद अंदाज लगा सकते हैं कि एशियाई खेलों में इस बार हमें नए पदक विजेता मिलने जा रहे हैं।
1: जी हाँ, जिसमें शैली सिंह से भी लॉन्ग जंप में उम्मीद होगी, मोहम्मद अफजल 800 मीटर में भारत की चुनौती पेश करेंगे, पैदल चाल में प्रियंका गोस्वामी एक बार फिर सबके उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करेंगी, साथ ही साथ एनसी सोजन की भी आपने चर्चा की। जब साई इस तरीके के इवेंट में खिलाड़ियों पर नजर रखता है और आप काफी करीब से हैं देख रहे हैं इन चीजों को, आपको क्या लगता है कि ट्रैक और फील्ड में वो टॉप 5 एथलीट्स कौन हैं जो जरूर पोडियम फिनिश कर सकते हैं अगर उनका दिन बेहतर रहा तो?
2: देखिए, नीरज चोपड़ा सबसे बड़े सुपरस्टार है इंडियन एथलेटिक्स के, बट उनके ना होने के बावजूद भी रोहित यादव और यशवीर सिंह जो हमारे एक वाइल्ड कार्ड रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में, और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि नीरज चोपड़ा के साथ भी कोई एक भारतीय पोडियम पे चढ़ेंगे, बट वो जो अनएक्सपेक्टेड था वो हो चुका है। तो मेरे ख्याल से अभी अगर जैवलिन की बात किया जाए, अगर मैं जैवलिन पे फोकस कर, तो रोहित और यशवीर में से हम उम्मीद करेंगे कोई दो अगर आ जाए पोडियम पे तो भारत के लिए विन विन सिचुएशन है। उसके साथ भी एनसी सोजन की बात आपने की थी, एनसी सोजन ने अभी हाल ही में अंजू बॉबी जॉर्ज की जो रिकॉर्ड है 6.83 मीटर की, उन्होंने 6.88 मीटर उन्होंने जंप किया, तो आई थिंक मेरे ख्याल से अभी जो एनसी सोजन का कंसिस्टेंसी है तो मेरे ख्याल से एशियन गेम्स में एट द टाइम, क्योंकि वो सिल्वर मेडलिस्ट ऑलरेडी है हंजाऊ से। उसके बाद मैं बोलना चाहूंगा पूजा सिंह के बारे में। पूजा सिंह का 1.93 जो पर्सनल बेस्ट है।

0: हाई जंप में,
1: हाई जंप में 2026 की कॉमनवेल्थ गेम्स में थोड़ा सा चूक हो गए थे, जहां पे वो 8th था, ये 1.77 मीटर, तो काफी लोग पूछ रहे थे क्या वो कंपटीशन का प्रेशर है। तो मेरे ख्याल से वो कंपटीशन का प्रेशर ना भी हो, क्योंकि अगर वो 6th था ये 1.80 के ऊपर, तो 1.93 अगर वो बेंचमार्क को क्वालिफाई करती है, प्रिटी श्योर शी विल बी अ मेडल प्रोबेबल इन आईची नगोया एशियन गेम्स।
0: तो उम्मीद करते हैं कि ट्रैक एंड फील्ड में भारतीय तिरंगा शान से लहराएगा। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब चर्चा देश की शान हॉकी की। 2023 में हमारी पुरुषों की हॉकी टीम ने फाइनल में जापान को 5-1 से रौंद कर गोल्ड मेडल जीता था और ओलंपिक का टिकट भी कटाया था। वहीं हमारी महिला हॉकी टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए कांस्य पदक हासिल किया था। मुना, आप हॉकी वर्ल्ड कप अभी कवर करके आई हैं और बात पुरुष हॉकी से शुरू करते हैं। उम्मीदों के अनुसार प्रदर्शन नहीं रहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि एशियन गेम्स में अगर टक्कर मिलेगी तो जापान से मिलेगी, कुछ हद तक मलेशिया को भी हम काउंट कर लेते हैं, किस तरह देखते हैं?
2: जी बिल्कुल, इस बार जब विश्व कप के लिए टीम गई थी तो लग रहा था कि 75 के बाद हम पहली बार पोडियम पे शायद खड़े होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर निराशाजनक प्रदर्शन रहा। खासकर गोलकीपिंग की अगर हम बात करें तो पूरे टूर्नामेंट में लगा कि पीआर श्रीजेश की कमी कहीं ना कहीं टीम को खल रही है। तो एक ये ऐसा डिपार्टमेंट है, और डिफेंस जो आखिरी मिनटों में गोल गवाना और फंबल करना, ये सब जो कमियां हैं वो भारतीय टीम ने काफी इस पर आत्ममंथन किया होगा। और यहाँ पर दारोमदार एक बार फिर रहेगा कि आप जो कोर ग्रुप है वो वही है, उसी को लेकर जा रहे हैं। तो जो पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्शन और जो गोलकीपिंग में चूक हुई है उनसे यहाँ पार पाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ चुनौतियां उतनी कठिन है नहीं। विश्व कप में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों के सामने आप खेल रहे थे, यहाँ पर आपसे हायर रैंकिंग वाली टीम कोई है नहीं। तो एशिया में चुनौती देने वाली जो टीमें हैं, पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान हॉकी का क्या हाल है वो हम सब देख ही रहे हैं। मलेशिया का भी एक अच्छी टीम हुआ करती थी, लेकिन आज की मलेशिया टीम उस स्तर की नहीं है कि वो भारतीय टीम को चुनौती दे सके। जापान जरूर एक डार्क हॉर्स है, क्योंकि ये एशियाई खेल जापान में ही हो रहे हैं, और 2018 में हमें याद है किस तरीके से अप्रत्याशित रूप से जापान ने स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक क्वालिफाई भी किया था। तो हरमनप्रीत सिंह और मनप्रीत का भी मैं नाम लूंगी, सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं, सबसे ज्यादा मैच भारत के लिए खेल चुके हैं। लेकिन जो वर्ल्ड कप में कमी नजर आई थी कि मिडफील्ड हमारा कहीं नजर ही नहीं आ रहा था, तो एक जो गैप्स मिडफील्ड में हो रहे हैं उनसे भारत को पार पाना होगा। और यहाँ जब हम लोअर रैंक टीम से खेलते हैं तो यहाँ पर कॉम्प्लिसेंसी से, आत्ममुग्धता से बचना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो यहाँ पर भारत को वर्ल्ड कप बीत गया, पीछे की बात है, उसको भुलाकर अब टारगेट जो है वो लॉस एंजलिस ओलंपिक है, उसको ध्यान में रखकर, क्योंकि हर टीम को चाहिए कि ओलंपिक की तैयारी के लिए एक लंबा समय मिले। और यहां से अगर हम क्वालिफाई कर जाते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि हमें क्वालिफायर से नहीं गुजरना पड़ेगा, तो उससे बचना चाहेगी टीम। क्वालिफायर का रास्ता हमेशा कठिन होता है, एशियन गेम्स के जरिए लॉस एंजलिस का टिकट कटाना ये सबसे बड़ी अभी लक्ष्य जो है वो भारतीय टीम का यही होना चाहिए, पुरुष हॉकी टीम।
0: सायंतन, पुरुष हॉकी की थोड़ी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विदेशी कोच हैं, मेंटल ट्रेनर भी हैं, फिजियो भी हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में थोड़ा फिटनेस का इशू नजर आया, क्या एशियन गेम्स से पहले उस पर तैयारी की गई है, उसको दुरुस्त किया गया है?
1: देखिए, अब हमें लॉस एंजलिस ओलंपिक्स का जो टारगेट है उसको मद्देनजर पे रखते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है एशियन गेम्स पे। वुमेन्स टीम अगर इतना अच्छा कर सकते हैं, वहाँ पे फिफ्थ आ सकती है, तो मेन्स टीम भी कहाँ पीछे, क्योंकि एशियन गेम्स में एक ट्रेंड चला है जहाँ पे मेंस हॉकी टीम से काफी एक्सपेक्टेशंस है और गोल्ड के नीचे एक्सपेक्टेशंस कभी नहीं है। तो उसी को साई इस बार मद्देनजर पे रखते हुए काफी सारे जापान में, जैसे माउंट फूजी में, जेफू में, तोयामा, ये सब जगहों में उन्होंने एक्सपोजर कैंप्स भी रखे ACTC के थ्रू, टॉप्स के थ्रू। काफी एक्सपोजर कैंप्स बोथ मेंस टीम और वुमेन्स टीम को मिले हैं। जैसे क्रेग फुल्टन की जो साइड है उनको भी काफी हेल्प मिलेगा, और शॉर्ट मरीन की जो वुमेन्स टीम है उनको भी काफी हेल्प मिले। शॉर्ट मरीन का पता है आपको, वुमेन्स टीम को आके एकदम पूरा चार चांद लगा दिया, क्योंकि उन्होंने 2022 जब हॉकी में हम लोग
2: फोर्थ प्लेस
1: फिनिश जब हम लोग हॉकी वुमेन्स में लाए थे, तो शॉर्ट मरीन भी थे, वो वापस आ गए, और वुमेन्स का कितना डेवलपमेंट हुआ आपको पता भी है वर्ल्ड कप में जो आया है। मेंस का हम यही उम्मीद करेंगे कि वो लोग बरकरार रखे यही परफॉर्मेंस जो हमने एक्सपोजर दिया है, जो हमने कैंप्स दिया है जापान में एक्लेमेटाइज और भी करने में वो मदद करे, एंड डेफिनेटली लॉस एंजलिस का जो टारगेट है वो हम फुलफिल कर सकते हैं।
0: महिला हॉकी की चर्चा करें, पिछली बार हम सेमीफाइनल में 0-4 से हार गए थे चीन से। इस बार जिस तरीके का विश्व कप में प्रदर्शन रहा, जैसा कि सायंतन बता रहे थे और हमारे खेल प्रेमी जानते भी है कि हम पांचवें स्थान पर रहे,

0: कितनी उम्मीदें हैं और टक्कर किस देश से आप देख रही हैं?
1: देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वर्ल्ड कप जाने से पहले जो बैकग्राउंड रहा है उसको देखते हुए हर कोई बात कर रहा था कि पुरुष हॉकी टीम क्या करेगी, क्या मेडल मिलेगा, क्या 50 साल का सूखा खत्म होगा। लेकिन जिस तरह से लड़कियों ने प्रदर्शन किया है, और आपको ये बात यहाँ ध्यान में रखनी होगी कि इस टीम में 11 खिलाड़ी ऐसी थी जो पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही थी, और 20-21-22 साल की 11 लड़कियां, तो महिला हॉकी टीम के पास ऊर्जा है, फिटनेस है, और शोर्ड मारिन जैसा एक कोच है। जब वो पिछली बार आए थे तब भी डोलड्रम में थी विमेन हॉकी, और उस हॉकी टीम को वो टोक्यो में चौथे स्थान तक लेकर गए। अभी भी आप देखिए, नेशंस कप जीता, क्वालिफायर जीता वर्ल्ड कप के लिए, और उसके बाद अब प्रबल दावेदार मानी जा रही है। और एशियाई स्तर पर चाइना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसके पास अनान एलिसन जैसी एक बेहतरीन कोच है। लेकिन हम विश्व कप के प्रदर्शन को अगर देखें तो उसी चाइना से हमारा सबसे पहला मुकाबला था और हमने उसको ड्रॉ पर रोका। तो एक बहुत बड़ा एक मेंटल एडवांटेज है भारतीय टीम के पास कि जो एक हवा होता था चाइनीज टीम का वो अब नहीं है, और ये टीम अपना दिन होने पर चाइना को हरा सकती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और गोलकीपरों का प्रदर्शन हमने देखा, सविता लेजेंडरी प्लेयर है और 320 मैच हो जाएंगे जैसे ही वो पहले मैच के लिए उतरेंगी, तो सविता का अनुभव है। उसके अलावा बिच्छू देवी ने जो प्रदर्शन किया है विश्व कप में, खासतौर पर इंग्लैंड के खिलाफ जो लास्ट 30 सेकंड में उनका सेव था, तो बिच्छू देवी पर भी यहाँ नजरें होंगी। चुनौती बहुत कड़ी नहीं है, और भारतीय टीम के पास एक पूरा कोचिंग स्टाफ है हर फील्ड के लिए, हर चीज के लिए। आप चाहे शोर्ड मारिन के साथ, आप देखिए वेन लोम्बार्ड है, जब वो यहाँ आए थे जनवरी में उनके पास 25 खिलाड़ियों की इंजरी लिस्ट थी, लेकिन आज आप टीम का फिटनेस लेवल देखिए। ताइके तकामा दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रैग फ्लिकर में से एक थे, वो भारतीय ड्रैग फ्लिकर दीपिका खासतौर पे उनको ट्रेन कर रहे हैं। उसके अलावा पिरमिन ब्लाक एक लेजेंडरी गोलकीपर रह चुके हैं डच, उन्होंने बिच्छू और सविता के साथ सेशन किए हैं। और मथियास विला अर्जेंटीना के जो एडवाइजर है, असिस्टेंट कोच भी है। उसके अलावा रोडेट और कियारा जो साइंटिफिक ट्रेनर हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस टीम के लिए। तो मुझे लगता है कि इस बार 1982 में हमने गोल्ड जीता था महिला हॉकी में, और मुझे लगता है इस बार पूरी प्रबल संभावना है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से माहौल है, अपबीट है टीम, ये टीम जरूर इस बार गोल्ड मेडल लेके आएगी।
0: चलिए, हॉकी के बाद चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट पर। बैडमिंटन कोर्ट पर भारत का पिछला प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा था। 2023 में यानी पिछले एशियन गेम्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुषों के डबल्स में भारत को एशियन गेम्स के इतिहास का पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। इसके अलावा पुरुष टीम ने रजत पदक और एचएस प्रणॉय ने पुरुष सिंगल्स में कांस्य पदक जीता था। और इस बार अगर हम आपको बताएं कि कौन से खिलाड़ी जा रहे हैं, तो मेन सिंगल्स में लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी होंगे पुरुष वर्ग में, साथ ही साथ महिला सिंगल्स में अनुभवी पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा अपनी चुनौती पेश करेंगी। मेन्स डबल्स में एक बार फिर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पर नजर होगी। हरी हरन और एमआर अर्जुन की जोड़ी भी चुनौती पेश करती नजर आएगी। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद के साथ साथ कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी भी होंगी। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा कास्त्रो की जोड़ी अपनी चुनौती पेश करती नजर आएंगी। मोना, एक तरफ तो अनुभव है पीवी सिंधु का, लक्ष्य सेन भी है, अगर पहले हम सिंगल्स की बात करें, लेकिन जो बड़ा इन्वर्टेड कॉमा है, दोनों फॉर्म में नहीं है।
1: जी बिल्कुल, लेकिन ओलंपिक पदक विजेता है दो बार की पीवी सिंधु, और लक्ष्य सेन हम सभी जानते हैं कि वो मामूली अंतर से ओलंपिक पदक से चुके हैं, तो काबिलियत पे कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि फॉर्म जो होता है वो टेम्परेरी होता है, लेकिन क्लास जो होता है वो परमानेंट होता है, और पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन के पास वो क्लास है कि अगर वो अपनी क्षमता पर खेले तो बिल्कुल स्वर्ण पदक के प्रबल दावेदारों में होंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी दावेदार है वो निश्चित तौर पे, जैसा आपने कहा, चिराग और सात्विक, पिछली बार भी गोल्ड जीता है और निरंतरता है उनके प्रदर्शन में कि कम से कम वर्ल्ड लेवल पे भी वो सेमीफाइनल तक जरूर जाते आए हैं, तो उनसे एक बार फिर यहाँ उन पर काफी दारोमदार होगा। और लड़कियों में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद, जिस तरह से वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने इतिहास रचा है, और एक कोर ग्रुप आप देखिए लगभग वही है जो हर बड़े टूर्नामेंट में आप देखते हैं भारतीय बैडमिंटन का, तो यहाँ पर त्रिशा और जौली से भी ये उम्मीद होगी कि वो जो वर्ल्ड चैंपियनशिप, अभी ज्यादा समय हुआ नहीं है उसको, तो वो जो लय है उसको बरकरार रखे, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज है उसको थोड़ा बेहतर करते हुए एक अच्छा भारत के लिए मेडल हॉल लेकर आए।
0: साइंथन, बैडमिंटन एक ऐसा खेल जिस पर खेल मंत्रालय और साई की पैनी नजर रहती है, और बहुत सारे उसमें इनोवेशन भी करते रहते हैं। जूनियर लेवल पर आप विदेशों

0: में खिलाड़ियों को भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए, विदेशी कोचेस को बुलाते हैं। इंडिविजुअल स्पोर्ट है जरूर, लेकिन बहुत सारी चीजें चल रही हैं इसमें। किन खिलाड़ियों से आपको उम्मीद है?
1: Well, जैसे अभी बताया गया कि ट्रेसा जोली और गायत्री गोपीचंद BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप दिल्ली में उन्होंने ऐसा करके दिखाया जो कुछ लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, काफी स्पोर्ट्स फैंस भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मैं बोलना चाहूंगा हंजाओ में वो लोग राउंड ऑफ 16 में आए थे, लेकिन अगर ये BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो फॉर्म दिखाए वो लोग जो डबल्स वुमेन्स पेयर, तो यू नेवर नो कि वो लोग कौन से स्टेज तक जा सकते हैं। और ये एशियन लेवल है तो एशियन लेवल में कंपटीशन आएगा, चाइना से आएगा, कोरिया से आएगा, जापान, थाईलैंड ऑफ कोर्स। लेकिन अगर वो लोग उस कॉन्फिडेंस उस मोरल को लेके आगे जाते हैं तो डेफिनेटली दे कैन डू समथिंग। उसके बाद में आऊंगा आयुष शेट्टी में। आयुष शेट्टी ने एशियन चैंपियनशिप्स में हिस्ट्री 2026 में इसी साल में किया था कि 1965 के बाद पहला खिलाड़ी जो एशियन चैंपियनशिप्स के फाइनल में और सिल्वर मेडल भी लाए। तो आयुष शेट्टी से भी यही उम्मीद है एंड डेफिनेटली होपिंग कि अच्छा कुछ बैडमिंटन में हो सकता है। एंड डेफिनेटली सात्विक चिराग एक डार्क हॉर्स है जो कंपटीशन में बाहर आते हैं, तो वो वाला चीज भी हमें देखने को मिल सकता है। तो देयर इज ऑप्टिमिज्म इन बैडमिंटन जो ऑफ कोर्स हम लोग सब विश करेंगे कि होपफुली अचानक हो या वो बाहर आए।
0: जी हाँ, बैडमिंटन कोर्ट पर भारतीय एथलीट अपनी चमक बिखेरे हम सब की उम्मीद है। लेकिन अब रुख करते हैं माटी के खेल कबड्डी की ओर। कबड्डी में भारत का दबदबा हमेशा से रहा है। पिछले एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष टीम ने ईरान को एक रोमांचक फाइनल में हराकर स्वर्ण पदक वापस हासिल किया था। वहीं भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ताइपे को हराकर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। मोना, हम सब जानते हैं कि कबड्डी में टीम अच्छी है और जब से कबड्डी लीग की शुरुआत हुई है फिटनेस लेवल भी आला दर्जे का हो गया है। लेकिन ईरान, दक्षिण कोरिया, चीनी ताइपे जैसी टीमें हमसे टकराएंगी, कितनी संभावना है इस बार?
2: देखिए, ईरान की ही चुनौती सबसे कठिन लग रही है भारत के लिए, लेकिन आप ये भी देखिए कि जो पास्ट रिकॉर्ड है 1990 के बाद लगातार 9 स्वर्ण। तो पहले ये होता था कि एशियन गेम्स में जब टीम कंटिंजेंट रवाना होता था तो ये मान लिया जाता था कि एक गोल्ड तो झोली में है ही कबड्डी का। लेकिन ईरान ऑफ लेट भारत के लिए एक कड़ी चुनौती साबित हुआ है। लेकिन जैसे आपने कहा, प्रो कबड्डी लीग आने के बाद से जो स्टैंडर्ड है खिलाड़ियों का हमारे, वो बहुत बहुत आगे जा चुका है। पवन सहरावत आज जाना माना नाम हो चुके हैं और काफी अच्छे खिलाड़ी भारतीय टीम के पास हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी ये स्मूथ ही रहने वाला है जर्नी। और महिला टीम की भी अगर हम बात करें तो ईरान ने हराया था भारत को हाल ही में, तो एक ईरान ही है वहां पर भी जो बहुत संभल कर उससे खेलना होगा। और अगर अपनी क्षमता के अनुरूप खेल पाए तो मुझे लगता है एक बार फिर हम दोहरा स्वर्ण यहाँ लेकर आ सकते हैं कबड्डी से।
0: जी हाँ, सायंतन पवन सहरावत की चर्चा

0: पर भी जो बहुत संभल कर उससे खेलना होगा, और अगर अपनी क्षमता के अनुरूप खेल पाए तो मुझे लगता है एक बार फिर हम दोहरा स्वर्ण यहाँ लेकर आ सकते हैं कबड्डी से।
1: जी हाँ, सायंतन पवन सहरावत की चर्चा हो रही है, अर्जुन देशवाल हैं, असलम इनामदार हैं, आशु मलिक, देवांग दलाल, आयान लोचब, सुनील कुमार, कुछ चहेते नाम भारतीय कबड्डी फैंस के लिए, लेकिन टक्कर काफी मुश्किल होने वाली, महिला टीम से कितनी उम्मीदें हैं आपको?
2: देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब एशियन गेम्स में हमारे टीम स्पोर्ट्स की बात किया जाता है तो हमेशा 6 मेडल्स तो हमारे लिए पक्का होता है, 2 मेंस एंड वुमेन्स कबड्डी टीम का, 2 मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेट टीम का और 2 हॉकी टीम्स के। पवन शेरावत की बात जो आपने किया, पवन शेरावत, मैं पहले PKL की बात करूंगा आपसे। 12 खिलाड़ी जो है PKL से, वो कैप्टन भी है, वाइस कैप्टन भी है विभिन्न टीम्स का PKL में, वो लोग एशियन गेम्स में भी अपना प्रदर्शन करने वाले। जैसे पवन शेरावत का नाम लिया आपने, तमिल थलाईवास के कैप्टन रह चुके हैं, पिछले बार के हंजू का गोल्ड मेडलिस्ट भी है। सुनील कुमार जो नेतृत्व करने जा रहे हैं वो यू मुंबा के कैप्टन भी है, तो काफी ऐसा प्रो कबड्डी लीग का एक्सपीरियंस भी हमको दिखने को मिलेगा। साई गांधीनगर में भी उनका ट्रेनिंग का एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर साई गांधीनगर में तैयार किया था। उसके पहले IIS बिलारी जो कर्नाटका में है, वहां पे भी एक टीम का बढ़िया से एक ट्रेनिंग कैंप किया गया था कबड्डी के लिए स्पेशली। तो मेरे ख्याल से अभी जो हाल ही में बात हुआ था मेरा कबड्डी टीम से, पुष्पा राणा जो है कैप्टन जो है विमेंस टीम का, वो भी काफी कॉन्फिडेंट है, और साथ ही साथ सुनील कुमार भी काफी कॉन्फिडेंट है जो मेंस टीम का कप्तान है। एंड ये भी बताना चाहूंगा कि अभी जो एज ग्रुप है मेंस टीम का स्पेशली 20 से 29 का एज रेंज में है, जिस एज में हम लोग कबड्डी में अपना पीक परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। कॉम्पिटिशन है तो ईरान से है हमारा, अगर कोरिया से भी आ सकता है, चाइना से भी आ सकता है, लेकिन एडवांटेज है हमारे पास, वी आर देयर टू विन द गोल्ड मेडल। बट थोड़ा सा अगर इधर उधर हो जाता है तो वो गेम टू गेम हो सकता है, बट आई थिंक मेडल हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कंफर्म्ड है जो स्वर्ण होने जा रहा है।
1: आइए अब बात करते हैं वेटलिफ्टिंग की, जहां ताकत, तकनीक और एकाग्रता की परीक्षा होती है। पिछले एशियन गेम्स में चोट और कड़े मुकाबले के कारण भारत का वेटलिफ्टिंग अभियान थोड़ा निराशाजनक जरूर रहा था। मीराबाई चानू भी चोट के कारण पदक से चूक गई थी। मुना, यहाँ पर कोई पुरुष वेटलिफ्टर प्रतियोगिता में जा नहीं रहा है, और एक बार फिर जो महिला टीम है उसमें मीराबाई चानू से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार 3रा स्वर्ण पदक जीत कर आई हैं, 49 किलोग्राम वजन वर्ग में अपनी चुनौती पेश करेंगी, क्या लगता है?
0: जी बिल्कुल, ऋषि कांता सिंह को जाना था लेकिन घुटने की चोट की वजह से वो टीम से बाहर हो गए, तो 4 महिलाएं वुमेन पावर जो है वो वेटलिफ्टिंग में देखने को मिलेगा। और मीराबाई चानू अभी ग्लासगो में लगातार 3रा स्वर्ण पदक उन्होंने जीता, और एक उनकी जो कैबिनेट है उसमें एक यही मेडल है जो नहीं है। पिछली बार बहुत कोशिश की लेकिन चोटिल थी और 4थे स्थान पर रही, तो इस बार पूरी उम्मीद है कि मीराबाई चानू जो है वो इस कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगी। उनके अलावा ज्ञानेश्वरी यादव है 53 किलो में, निरुपमा देवी है 61 किलो में, और हरजिंदर कौर है 69 किलो में। तो इन चारों महिलाओं से उम्मीद होगी कि भारत ने वेटलिफ्टिंग में काफी सारे 14 पदक जीते हैं लेकिन स्वर्ण पदक एक भी नहीं है एशियन गेम्स का, तो वो कमी को पूरा करने के लिए मीराबाई चानू पर काफी दारोमदार होगा।
1: और अब बात टेबल टेनिस की, जहां भारत ने हाल के वर्षों में अद्भुत प्रगति की है। पिछले एशियन गेम्स में सुतीर्थ मुखर्जी और अहिका मुखर्जी की जोड़ी ने दुनिया की नंबर 1 चीनी जोड़ी को हराकर विमेंस डबल्स में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता था। इस बार फिर जी साथियन पर नजर होगी, मानव ठक्कर होंगे, श्रीजा अकुला और सुतीर्था मुखर्जी पर भी नजरें होंगी। क्या लगता है कि किन खिलाड़ियों से ज्यादा उम्मीदें हैं? सुतीर्था पिछले कुछ समय से लगातार भारत के लिए बेहतर प्रदर्शन करती नजर आई हैं, दिया चिताले ने भी प्रॉमिस दिखाया है।
2: देखिए, अगर एशियन गेम्स की बात किया जाए तो हमारा जो डबल्स पेयर है, काफी हम लोग ने साइज से इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग दिया है उनको, गुजरात में भी है, बेंगलोर में भी है, हैदराबाद में भी, कोलकाता में, काफी इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग हुआ था, कैंप नहीं हुआ था एक कंबाइंड, लेकिन इंडिविजुअल ट्रेनिंग से यही बाहर आया कि मानव ठक्कर और मनु शाह जो है जो मेन्स डबल्स पेयर में खेलने जा रहे हैं, वर्ल्ड रैंकिंग 2 पे आए थे ITTF डबल्स स्टैंडिंग्स में, तो ये काफी एक हिस्टोरिक है। और इसके साथ भी मनु शाह, दिया चताले जैसे आपने बात किया, उनके साथ भी मिक्स डबल्स खेलने जा रहे हैं, तो शरद कमल जो हमारे असिस्टेंट शेफ डे मिशन भी है एशियन गेम्स के, वो भी इनको डायरेक्टली ट्रेन किया है, सबसे फेमस टेबल टेनिस प्लेयर इन इंडिया। तो मेरे ख्याल से मनु शाह, मानव ठक्कर, दिया चताले, इन तीनों में से काफी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, और साथ ही साथ श्रीजा अकुला भी है हाईएस्ट रैंक्ड वुमेन्स प्लेयर राइट नाउ आफ्टर मनिका बत्रा एंड सुतीर्था जैसे आपने जिक्र किया, तो इनसे आई थिंक मेंस टीम, वुमेन्स टीम काफी सारे कॉम्पिटिशन में, काफी सारे कैटेगरीज में हम लोग अच्छा उम्मीद कर सकते हैं टेबल टेनिस के।
1: और अब बात

0: खेल की जो भारत में ही नहीं दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय है, जी हां क्रिकेट। 2023 एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता था और इस बार भी उम्मीद यही है। टक्कर कहीं देखती है मोना?
1: बिल्कुल, जैसे सैंतन कह चुके हैं कि वो कुछ पदक है जो हमें लग रहा है कि हमारी झोली में है पहले से, तो क्रिकेट सबसे ऊपर उसमें नाम आता है। महिला टीम की बात करें तो अभी अभी एशिया कप जीती है, जबरदस्त आत्मविश्वास है और हमने देखा कि एशियाई स्तर पर कोई टक्कर नहीं है भारतीय महिला टीम के लिए। और पुरुष टीम में तो वैसे ही सितारे भरे हुए हैं, श्रेयस अय्यर हो, वैभव सूर्यवंशी हो, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई चुनौती दूर दूर तक भारत के लिए नजर आती है।
0: सायंतन कार्यक्रम के समापन में क्या उम्मीदें हैं साई को, क्या उम्मीदें हैं खेल मंत्रालय को और क्या उम्मीदें हैं बतौर मीडिया सलाहकार साई से जुड़े आपको?
2: लास्ट टाइम जितना कंटिंजेंट थे उससे काफी कम कंटिंजेंट इस बार जा रहा है, 501 पार्टिसिपेंट जा रहा है, लेकिन 107 मेडल जो लास्ट टाइम आए थे उससे भी हम एटलीस्ट 25% इंक्रीज की उम्मीद कर सकते हैं। तो हमारा ग्राफ यही रहेगा कि हम लोग तो थोड़ा सा कम कंटिंजेंट भेज रहे हैं, लेकिन वो कंटिंजेंट और भी मेडल्स ला सकते हैं। ऐसे कुछ लोग मंत्रालय से डिसीजन लिया गया कि कुछ लोग को जस्ट पार्टिसिपेशन एक्सपोजर के लिए हम लोग नहीं भेजेंगे, बट जो मेडल के दावेदार है उनको ही भेजेंगे, क्योंकि ये रूल पहले से किया गया कि एथलीट्स का ट्रेनिंग देखते ही हमने ये फैसला लिया कि एथलीट्स अभी वो लोग मेडल जीतने के लिए जाते हैं। एक माइंडसेट शिफ्ट हुआ है और साई ने, खेल मंत्रालय ने भी इसी चीज को मद्देनजर पे रखते हुए इस बार जो 501 एथलीट्स को भेज रहे हैं और भी 25% इंक्रीज एटलीस्ट हम उम्मीद कर सकते हैं एंड डेफिनेटली वो होके ही रहेंगे एशियन गेम्स 2026 में।
0: मैदान तैयार है, रोशनी जगमगा रही है और तिरंगा जीत की उम्मीद लेकर आसमान में लहरा रहा है। तो जब भी कोई भारतीय खिलाड़ी मैदान में उतरे, तालियां जरूर बजाइए, हौसला बढ़ाइए और दिल से कहिए चीयर फॉर भारत। चीयर फॉर भारत के इस अंक से जुड़ने के लिए मोना पार्थसारथी आपका, सायंतन मोइत्रो आपका बहुत बहुत आभार।
1: शुक्रिया आनंद,
2: थैंक यू सो मच।
0: इस कार्यक्रम में प्रोडक्शन सहयोग दिया स्वाति कपूर ने, इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया शाहनवाज खान ने। आकाशवाणी पर कल इसी समय एशियन गेम्स पर एक विशेष कार्यक्रम के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे यानी आनंद श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धता प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमेरिका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 1 महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू हुआ और दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने

0: ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश 8 अरब डॉलर से बढ़कर 13.5 अरब डॉलर कर दिया गया है। इस चरण में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं।
0: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग 8 बिलियन डॉलर्स का था, जबकि सेकंड फेज का 13.5 बिलियन डॉलर तक का हमने तय किया है।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमिकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही।
2: अप्रोच इन सेमिकॉन 2.0,
3: सेमिकॉन के दूसरे चरण में मुख्य रूप से डिजाइन कंपनियों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा, चाहे वे स्टार्टअप हों या बड़ी कंपनियां। बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में आना चाहेंगी क्योंकि अब इसका दायरा बहुत बड़ा है और अवसर भी अपार हैं। स्टार्टअप ऐसे नवोन्मेषी समाधान ला सकते हैं जिन्हें बाजार पसंद करेगा।
2: इनोवेटिव सॉल्यूशंस व्हिच विल बी लाइक बाय द मार्केट।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि एक कंपनी ने आज भारत में 5 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है और कई अन्य कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही हैं। सरकार ने कहा है कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच ऊर्जा सुनिश्चितता जारी रखेगी। ये बयान अमेरिका की प्रतिनिधि सभा द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बीच आया है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे भूटान में यूपीआई लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूरी हो गई है। इस दौरान भारतीय संस्थानों में भूटानी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए नेहरू वांगचुक छात्रवृत्ति योजना के विस्तार के लिए भी समझौता हुआ। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री छरिंग तोबगे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इस समय दिल्ली और बिहार सहित देश भर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रुपए जमा किए जाएंगे।
0: आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूँ। घर में हमारी माताओं बहनों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, अनेक छोटे

0: फैसलों के बीच एक महिला हर तरीके से परिवार का ख्याल रखती है।
1: प्रधानमंत्री जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब देश की बागडोर संभाली थी तो उनके सुशासन के विजन में सरकार और जनता के बीच सीधा और निरंतर संवाद स्थापित करने का विचार प्रमुखता से सामने आया। इसी सोच के साथ जुलाई 2014 में नागरिकों की भागीदारी के लिए MyGov प्लेटफॉर्म की शुरुआत की ताकि नीति निर्माण में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित की जा सके। जनवरी 2024 में नई दिल्ली में NCC कैडेट्स रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैडेट से MyGov प्लेटफॉर्म पर जाकर विकसित भारत के अपने सुझाव देने का आह्वान किया था।
3: विकसित भारत के निर्माण के लिए रोडमैप बनाने का काम चल रहा है तो उसमें आपकी भागीदारी बहुत बड़ी है। आप जैसे युवाओं के लिए ही सरकार ने मेरा युवा भारत यानी माय भारत संगठन भी बनाया है। मैं आप जैसे सभी युवाओं को कहूंगा कि मेरा युवा भारत संगठन में खुद को जरूर रजिस्टर कराएं। आप MyGov पर जाकर विकसित भारत के निर्माण के लिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सपने आपकी भागीदारी से ही पूरे होंगे। आप ही विकसित भारत के शिल्पी हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के रहने वाले रोहन राज ने MyGov को एक अच्छी पहल बताया।
4: MyGov के जरिए लोग सरकारी योजनाओं और सरकार के अलग अलग कामों की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही लोग अपनी राय और सुझाव भी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि लोग को सिर्फ जानकारी लेने का मौका नहीं मिलता बल्कि अपनी बात रखने का और देश के विकास में भागीदारी करने का भी मौका मिलता है।
2: इस MyGov प्लेटफॉर्म पर इस साल जुलाई तक लगभग 6.5 करोड़ नागरिक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने तिब्बती शरणार्थियों को पिछले 6 दशकों से अधिक समय तक शरण देने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। ऑनलाइन नीलामी pmmementos.gov.in पर 31 अक्टूबर तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को ये पता लगाने के निर्देश दिए हैं कि विकसित भारत जी रामजी योजना विकसित गांवों के निर्माण में किस प्रकार योगदान दे सकती है। एक कार्यशाला में श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक उपयोग में आए और गांवों को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने में सहायक हों। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार वर्षा और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया। ये कोर्स

0: बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। इसमें शिक्षकों को बच्चों को और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का 16वां चरण शुरू किया। इस चरण में 9 कोयला उत्पादक राज्यों में स्थित 25 कोयला खंडों की नीलामी की जा रही है। इनमें 21 पूर्णतः और 4 आंशिक रूप से अन्वेषित खदानें शामिल हैं। 9 कोयला उत्पादक राज्यों में अब तक कुल 147 कोयला खदानों की नीलामी हो चुकी है। इस वर्ष अगस्त में भारत का वस्त्र निर्यात बढ़कर 29,700 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में अगस्त में निर्यात में 16.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल से अगस्त 2026 के दौरान वस्त्र निर्यात 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच गया। इसमें पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10.3% की वृद्धि है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
1: सेंसेक्स 22 अंक की मामूली गिरावट से 74,315 के स्तर पर रहा, जबकि निफ्टी 53 अंक की मजबूती से 23,271 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया मामूली सुधार से 95.94 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अब बात खेलों की। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैच की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला दिल्ली में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 18वें ओवर में 4 विकेट पर 201 रन बना लिए हैं। अभिषेक शर्मा ने 34 गेंद पर 108 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। वे भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 30 गेंद में शतक पूरा किया। भारत 2 मुकाबले जीतकर पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। मौसम विभाग ने कल बिहार, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ तूफान आने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमरीका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 1 महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi positions India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. 1,00,000 crore rupee investment commitment received under Semicon 2.0 program. India asserts it will take all necessary steps to ensure energy security as US passes bill imposing 100% tariffs on countries procuring Russian crude oil. External Affairs Minister Dr. Jaishankar says India firmly committed to Bhutan's progress. Month-long Seva Sankalp Abhiyan begins across the country, marking Prime Minister Narendra Modi's 76th birthday and 25 years in public service. And in men's cricket, India and Afghanistan face off in the third and final match of the T20 series in Delhi. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today positioned India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. He said the world is looking for new and trusted manufacturing destinations and the country is steadily preparing itself to meet the same. He highlighted that India's growth in critical industries will strengthen global supply chains and create new opportunities amid evolving supply chain challenges around the globe. The Prime Minister stated this while inaugurating the 5th edition of Semicon India at Yashobhoomi in New Delhi.
3: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत

0: countrywide.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए स्वच्छ भारत में जन भागीदारी की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल।
2: नमस्कार। स्वच्छ भारत में जन भागीदारी, राष्ट्रव्यापी देशव्यापी स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत आज हुई है। इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वच्छ भारत अभियान के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत। अक्षय जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: आज देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत हुई है, ये कितना बड़ा अभियान मानते हैं, क्योंकि ये 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन इसका समापन होगा। इसके क्या मायने हैं और आम लोगों के लिए ये किस तरीके से आंका जा सकता है?
3: ये अच्छी बात है कि इस साल फिर एक बार स्वच्छता ही सेवा हो रहा है, लेकिन इस आंदोलन की शुरुआत आज नहीं है। 2014 में लाल किला की प्राचीर के ऊपर से उस टाइम नए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को आह्वान दिया था और उस टाइम लोगों को चौंका दिया था कि हमें देश को स्वच्छ करना चाहिए, हमारे आदत बदलना चाहिए और हमारे जो बहन माँ और जो भी महिलाएं हैं उनकी डिग्निटी और सिक्योरिटी के खातिर, बीमारी से बचने के खातिर देश को स्वच्छ करना अति आवश्यक है और इसके लिए एक जन आंदोलन की जरूरत है। तो 14 से लेके अभी तक 26 तक 12 साल हो गया ये आंदोलन चलता आ रहा है और ये पहले ऐसा कभी नहीं था। और मैं अगर कह सकता हूँ कि हमारे भारत की जो आजादी की लड़ाई है उस टाइम जो आंदोलन था उसके बाद अगर एक सचमुच के एक जन आंदोलन हुआ है तो मैं स्वच्छ भारत का मानूंगा। और प्रधानमंत्री जी का अगुवाई में एक बहुत बड़ा चीज शुरू हुआ जो आज तक निरंतर चल रहा है, उसका नाम स्वच्छता ही सेवा, और वो आज 17 सितंबर को शुरू होता है। पहले 2 पक्ष के लिए हुआ करता था, जैसे कि स्वच्छ भारत दिवस 2 अक्टूबर जो कि गांधी जयंती है उस दिन उसका कंप्लीशन हुआ करता था। अभी इस बार 1 महीना है, लेकिन इसके पीछे जो भावना है वो है कि ये जो स्वच्छता है या देश को स्वच्छ करने का जो मुहिम है ये जनता

0: किए, जैसे गांधी जी ने बोला था कि भाई अपने हाथ में झाड़ू पकड़ोगे तब अपना आंगन और बाहर देश साफ होगा, ऐसे ही एक अंदर में इंसान और सारे सिटीजन सबका अंदर में एक निर्णय है कि हम खुद अपना आंगन, अपना जो बाहर गली सड़क और पब्लिक प्लेसेस सारे जगह स्कूल मोहल्ला सब कुछ साफ करेंगे, हम खुद ही साफ करेंगे सब मिलके ये एक महीना खास करके आज से लेके। तो ये स्वच्छता ही सेवा, अपने जो श्रमदान करेंगे और जगह जगह सफाई करेंगे एक मिसाल करेंगे, इसमें एक जोश आएगा। अपना स्वच्छता जो कार्यक्रम है जैसे कि 12 करोड़ शौचालय बने 2014 से लेकर आज तक, और घर घर से वेस्ट मैनेजमेंट का सारे घरों की कचरा जो है रोज आते हैं, गाड़ियां आके घर से कलेक्शन होते हैं, वेस्ट रिकवरी और वेस्ट प्रोसेसिंग का बहुत कैपेसिटी बढ़ा है, बाहर जो कूड़े का शहरों की बाहर जो लैंडफिल बोलते हैं उसका संख्या भी कम हो रहा है, बहुत सारी चीज हो रहा है। लेकिन ये जो बात है स्वच्छता ही सेवा की जो एक महीना है, ये लोगों की कार्यक्रम इसको दिखाने के लिए लोग खुद आकर बाहर साफ करेंगे वही चल रहा है, और 17 से शुरू हुआ था बहुत सफल रहा है, इसमें करोड़ों लोग हर साल जुड़ते हैं, और भी होता है तरह तरह के समय में, कभी एक हफ्ता कभी दो दिन कभी कोई एक फंक्शन है सेरेमनी है या कोई ओकेजन है उसमें भी होता है, और से बड़ी और कंसंट्रेटेड फोकस तरीके से अगर कभी होता है, और इसमें स्वच्छ भारत मिशन के जो दो मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय एक शहरी और आवास जो मंत्रालय है, उनमें से स्वच्छ भारत मिशन के जो रूरल और अर्बन दोनों पक्ष मिलके इसमें थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन लोगों के हाथ में काम है, लोग साफ सफाई करते हैं सब जुड़ते हैं और एक सेवा मनोभाव से करते हैं और एक आंदोलन के तरीके से करते हैं।
1: इसमें जन भागीदारी किस तरह से बढ़ाई जा सकती है, जागरूकता किस तरह से फैलाई जा सकती है, और जागरूकता को सारी जनता आमतौर पर खुद से अपनाए उसके लिए किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, और सरकार कितनी सफल हो पाई है इसमें?
0: इसमें सफलता तो आप अगर पहली फेज भी माने, जैसे कि 14 से 19 पहला फेज था और 19 से 26 जो है इस साल तक दूसरा फेज है स्वच्छ भारत मिशन का, पहला फेज में तो लोगों की भागीदारी बहुत जबरदस्त था। उस टाइम मैं सोचता हूँ कि फेज टू जो खत्म होने वाला है और फेज थ्री जो आने वाला है, ये जन भागीदारी को और थोड़ा बढ़ाने की स्कोप है, जो कि पहले था 14 से 19 तक बहुत जबरदस्त था, उस टाइम गांव गांव शहर शहर लहर जैसा चल पड़ा था, उस टाइम लोग करीब करीब प्रण कर लिए थे कि हमारे गांव को या हमारे शहर को खुले शौच से मुक्त करना है, वो फोकस था उसमें खुले शौच से मुक्त जो ओपन डेफिकेशन फ्री बोलते हैं। और बहुत सारे श्रोताओं को शायद ध्यान नहीं होगा, 2014 में भारत में खुले में शौच करने वाली लोगों की संख्या जो है 60 करोड़ 600 मिलियन था, और वो दुनिया के सारे खुले शौच करने का 60% था। लगता था कि भारत में ये जो काम है ये कभी बन नहीं पाएगा, और टोटल एक्सेस और यूसेज जो टॉयलेट की था शौचालय की, मान लीजिए 1947 जब से भारत आजाद हुआ तब से लेके 2014 तक करीब 38% था, लेकिन 2014 से लेके 19 के अंदर देश खुले में शौच मुक्त हुआ। इसको मेंटेन करने का और आगे बढ़ाने का बहुत जरूरत है, और इसमें 4 P बोला जाता है, 4 P। पहला पी है पॉलिटिकल लीडरशिप जो प्रधानमंत्री ने दिया और सारे लोगों को जितने बड़े बड़े लीडर सबको इन्वॉल्व किया, सारे मुख्यमंत्री सारे कैबिनेट मंत्री सारे गवर्नर सारे MP MLA और जितने बड़े बड़े सितारे हैं सब इन्वॉल्व होंगे। दूसरा है पब्लिक फाइनेंस, सरकार ने काफी पैसा लगाए हैं सैनिटेशन के ऊपर, सफाई के ऊपर कभी इतिहास में इतना पैसा नहीं लगाया गया था, बहुत पैसा लगाया गया। तीसरा पी है पार्टनरशिप, सबको जुड़ा, ये सफाई जो है सबके काम हो गया, किसी एक का कोई मंत्रालय का काम नहीं है, सरकार की काम नहीं है, उसमें कॉरपोरेट भी जुड़े, सिविल सोसाइटी भी जुड़े, मीडिया भी काफी जोर शोर से जुड़ा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार का उसमें दोनों का तालमेल रहा, लोकल गवर्नमेंट जैसे डिस्ट्रिक्ट और पंचायत और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जुड़े, सबका पार्टनरशिप से काम हुआ। लेकिन जो आखिरी पी जिसका की जिक्र आपने अभी किया वो है पीपुल्स पार्टिसिपेशन या लोगों की भागीदारी। जैसे अभी जो स्वच्छता ही सेवा हो रहा है उसमें यूनिट्स आइडेंटिफाई किया गया है, जो सबसे चैलेंजिंग शहर में खास करके ज्यादातर जो जो जगह एकदम जिद्दी की तरह से वहां गंदगी है उसको सब मिलकर साफ करेंगे, साफ नहीं तो माफ नहीं। बात है निपटान वेस्ट का, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट का निपटान की बात हो रहा है, और ये शहरी इलाका में ज्यादा चैलेंजिंग है, गाँव में इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन और जैसे गार्बेज फ्री सिटी का एक रखा गया है टारगेट, 4,805,000 करीब हमारा शहर और नगर है, तो वो गार्बेज फ्री कब होंगे और थोड़ी समय लग जाएगा, लेकिन काम निरंतर प्रयास है, क्योंकि जैसे गांव के लोग जितना जुड़ गए थे शहर के लोग शायद इतना भी जुड़ नहीं पाए, और वेस्ट जो डिस्पोजल है या वेस्ट सेग्रीगेशन वेस्ट प्रोक्योरमेंट वेस्ट रिकवरी हुआ वेस्ट को कन्वर्ट करना हुआ निपटान करना हुआ ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम है, और इसमें टेक्नोलॉजी भी आते हैं, और कुछ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज

0: में आता है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह का लोगों की इसमें जुड़ाव था 2014 से 19 फेज 1 में ये जुड़ाव का और एक बार थोड़ा सा इसका रिवाइवल होने का बहुत आवश्यक है। ओपन डेफिकेशन फ्री तो एक बार हो गया खुले शौच से मुक्त अभी, लेकिन उसके आगे पैरामीटर्स जोड़ जाता है कि क्या गांव में कचरे का निपटान हुआ है, क्या गंदे पानी के स्रोत बंद किया गया है, क्या उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। अगर वेस्ट का एक बार सेग्रीगेशन हो जाए तो फिर वो गोल्ड बन जाता है, क्योंकि उसका प्रोसेसिंग और उसका वैल्यू जो निकलना है बढ़िया से निकलता है, तो उसे वेस्ट टू वेल्थ निकलता है उसमें, क्योंकि वेस्ट जो है रिसोर्स है। ये सरकार ने खाली कहा नहीं है, ये तो अभी इंडस्ट्री और एंटरप्राइज धीरे धीरे आ रहे हैं, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, क्योंकि इसमें इतना भरा हुआ है जिसको कचरा से कंचन बोला जा रहा है तो इसमें है। लेकिन उसके लिए पहली कंडीशन है, चाहे इंडिविजुअल घर का हो या कोई बल्क जनरेटर्स हैं, चाहे जिसे रेसिडेंशियल सोसाइटीज हो, मॉल्स हो, कॉलेज हो, फैक्ट्री हो, रेस्टोरेंट हो, वहां से कचरे जब निकलेंगे ना तो वो सेग्रीगेट होकर निकलना है। नहीं तो सेग्रीगेट होकर नहीं निकलता है तो फिर वो बीमारी और गंदगी और दुनिया भर का लैंडफिल ये सब का आशंकाएं बढ़ता है और यही सब होता है।
1: आपने बताया कि आम जनता को जिस तरह से इसमें भागीदारी करने की जरूरत है, तो कार्यालय स्तर पर नहीं ऑफिस स्तर पर भी बहुत सारे हैं आजकल, चूंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे की भी बात हमें करनी चाहिए, वो भी एक बड़ी समस्या है। तो ई कचरा प्रबंधन बहुत सारे जो कार्यालय हैं केंद्र सरकार के, राज्य सरकारों के जो कार्यालय हैं उसमें भी जैसे कि सरकार ने कागज पे काम करने की बजाय वो जो ई प्रबंधन किया है या ई फाइलिंग का और ई ऑफिस का भी जो किया है, इससे कितना आसानी हुई है ये सारे कचरा निपटाने में।
0: बिल्कुल, आप देखिए ना इलेक्शन में, मैं इलेक्शन में भी कुछ दिन काम किया था और इलेक्शन में जब बैलेट को निकालकर ईवीएम लगाया तो कितना कागज की बचत हुआ। और कागज बचत होने का मतलब इतना खाली कागज की बचत नहीं होता है, उसमें एनवायरमेंट, ट्री, गच काटने का और कचरा, ये सबसे रिहायत मिलता है। तो ऐसे ही सरकार का एक प्रोग्राम चला हुआ है मिनिस्ट्री से मिनिस्ट्री लेके, कैसे ई ऑफिस होगा, कैसे कागज की यूज कम होगा, कैसे पुराना चीज निकाल के उसको डिस्पोजल होगा। जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोला, क्योंकि आजकल तो हम लोगों का ऐसे हो गया ना, जैसे मोबाइल फोन बोलिए या लैपटॉप बोलिए या आईपैड बोलिए या टीवी बोलिए, जितना इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है इसको इतना चेंजेस आता रहता है, अपग्रेड होता रहता है, नया नया वर्जन आता है और लोगों का खरीदने का कैपेसिटी इतना बढ़ा है, लोग चेंज करते रहते हैं। जो पुरानी चीज है उसको अगर ठीक तरह से उसको डिस्पोजल नहीं किया गया ठीक जगह में जाके, उसको एक चैनल है जिस तरह से आइडेंटिफाई होकर जगह, ये खाली कचड़े में डाल देने से नहीं होगा, इसको निकाल के इसका एक साइंटिफिक तरीका है डिस्पोजल के लिए, नहीं तो पूरा टॉक्सिक हो सकता है, बहुत सारी चीज डेंजरस क्रिएट हो सकते हैं इसमें। और एक बात है, मेडिकल से जो वेस्ट होता है उसका भी एक पर्टिकुलर तरीके होते हैं डिस्पोजल होने का। एक बड़ा कंसेप्ट जो दुनिया में आया है और सरकार ने उसको बढ़ावा दिया है, नीति आयोग भी बढ़ावा देता है, ये RRR, ये वेस्ट मैनेजमेंट और स्वच्छता के साथ बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इसमें है रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल, थ्री आर, मतलब आप चीजों की, जैसे पहले जैसे गांधी जी कहा करते थे कि अपना जरूरत के हिसाब से चीजें इस्तेमाल करो, ऐसे नहीं कि स्प्लॉरिज कर रहे हैं आप, है ना। तो वो बोलते हैं कि रिड्यूस, आप जो सामान यूज करते हैं रिड्यूस, लेकिन आज को मेरे को लगता है गांधीवादी बातों को सुनने के लिए शायद और रिड्यूस करने के लिए कंजम्पशन को, ये कंज्यूमर दुनिया में रिड्यूस करने का मैं तो ज्यादा आशावादी नहीं हूँ, क्योंकि देख नहीं रहा है। रीयूज रिसाइकल जरूर हो सकता है, आप कोई चीज को रीयूज करिए कोई तरीके से करके, उसका मिसाल बहुत है जो जिसमें जैसे कि प्रधानमंत्री जी मन की बात में भी वो जिक्र करते हैं ये रीयूज रिसाइकल का, हर चीज रिसाइकल हो सकता है, हर चीज का रीयूज हो सकता है। तो हम हर चीज पर थोड़ा सा, जैसे मटेरियल सराउंडिंग हमारा है, कंज्यूमेबल आइटम्स है, चाहे हमारे घर में हो, दफ्तर में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस जहां भी हो, हम थोड़ा सा उसको यूज करने के टाइम थोड़ा सोचें। आपने शायद सुना होगा लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, प्रधानमंत्री जी ने एक दुनिया को कॉन्सेप्ट दिया है भारत के अगुवाई में, LIFE, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसमें लगा है कि जितना आप जुडिशियस कंजम्पशन के ऊपर बात किया गया
1: जी,
0: आप जो कंज्यूम करें तो उसका स्वच्छता के साथ लिंक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आज के तारीख में, क्योंकि ये सब दुनिया भर का चीज इस्तेमाल करके बाएं दाएं फेंकते रहिए या और भी खरीदते रहिए तो फिर तो कचरों जाएगा कहाँ, कचरे तो रहेगा ना वहाँ, फिर उसको निपटान करने के लिए आपको प्रबंधन करना पड़ेगा, उसमें भी खर्च होता है, उसमें भी मैनेजमेंट होता है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे लग रहा है कि एक दुनिया को सस्टेन करने के लिए, अपना एनवायरमेंट के लिए भी बहुत काम देता है।
1: अच्छा, जैसे इस बार 1 अक्टूबर को 1 घंटा 1 दिन 1 साथ देश भर में स्वैच्छिक श्रमदान की बात है। हमारे यहाँ ना बहुत अच्छे अच्छे सार्वजनिक स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, समुद्र तट हैं, मंदिर परिसर हैं, और अभी तो बहुत सारे जो इस तरीके से जो धार्मिक स्थल भी बने हैं वहां पे स्वैच्छिक श्रमदान करने की बात करी, और आजकल का युवा भी जो है इसके बारे में काफी जागरूक हुआ है। आप देखिएगा अगर कहीं बार हम समुद्र तट पर जाते हैं या किसी सार्वजनिक स्थल पर जाते हैं तो वहां पे कूड़ा फैलाने के प्रति जो प्रवृत्ति है वो कम हुई है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे?
0: बिल्कुल, ये तो एकदम मिसाल सेटिंग के बारे में बात हुआ कि एक मिसाल बनेगा, उसमें रिकॉर्ड्स भी बनते हैं।

0: कई बार रिकॉर्ड्स बने, इस बार होपफुली और भी बड़ा रिकॉर्ड बनेंगे। लेकिन एक सोच आइकॉनिक प्लेस प्रोग्राम शुरू हुआ था। देश में जितना बड़े बड़े जगह है, जैसे तीर्थ और या भ्रमण की जगह जो है, टूरिज्म सेंटर, उसी जगह में क्योंकि फुटफॉल, आपने जैसे अभी कहा, फुटफॉल बहुत ज्यादा रहता है और उसमें फिर कचरा की संभावना होता है, गंदगी का संभावना होता है। लेकिन आजकल लोगों को जागरूकता इतना आया है और लोगों की तरफ से, जैसे सरकार या एजेंसीज की तरफ से इतना कोशिश होता है, पहले सैनिटेशन को सामने रखा जाता है। अब कुंभ का देखिए ना, उसके पहले तो स्वच्छ कुंभ इसको बुलाया गया था। उस टाइम कुछ भी करने के पहले सफाई का, जैसे शौचालय का, ड्रेनेज का, सीवेज का, सॉलिड एंड लिक्विड जो वेस्ट जनरेट होगा, जैसे करोड़ों लोग आएंगे, करोड़ों लोगों का जो चीजें यहाँ से निकलेगा वहां से निकलेगा, उसका कैसे बंदोबस्त है, वो पहले किया जाता है। आजकल छोटे छोटे मंदिरों में भी देखेंगे जो फूल जैसे चढ़ाया गया, प्रसाद चढ़ाया गया, उसके बाद उसको रिसाइकिल किया जाता है, फूलों को निकाल के ड्राई फ्लावर्स या उसमें अगरबत्ती या और तरफ से जो कॉटेज इंडस्ट्री बनाया जाता है।
1: आज भी जो विभिन्न कार्यालय है, आज स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई है, आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग में भी यहाँ पे भी स्वच्छता, सभी कर्मचारियों की स्वच्छता की शपथ दिलाई गई है। ऐसा माना जा सकता है कि अब काफी लोग जागरूक होंगे इसके बारे में।
0: एक प्रण है, जैसे ये स्वच्छता एक दिन की बात नहीं है और स्वच्छता कोई जन्मगत आदत नहीं है, इस आदत को क्रिएट किया जाता है, ये एजुकेशन है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और आज की तारीख में खत्म नहीं हो पाएगा। हमें इसको सस्टेन करना पड़ेगा, हमें उसको साथ साथ लेके अपने से अपने बच्चों का और आगे आगे इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो कचरे को निकालने का प्रक्रिया भी रोज होना चाहिए, सफाई को सिखाया जाता है, अगर सिखाया जाता है तो बच्चों को, घर में सबको अपने अपने सफाई का आदत समाज में सिखाया जाएगा,
1: घर से समाज तक, समाज से जन भागीदारी, इस तरह की सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। चलिए अक्षय जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वच्छ भारत में जन भागीदारी की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे स्वच्छ भारत मिशन के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कंट्री वाइड

0: अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
2: हेलो,
3: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
4: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
5: मुंह मिठा करन लगे हो, नौकरी लागे लगदी है, मुबारका फेरते, पर किते उन्होंने नौकरी देन तो पहला कोई पैसे जमा करवाउन दी गल ता नहीं कही? जे कही है तो फिर जागरूक बनो, ध्यान रखो, क्योंकि आजकल ए ठगण दे नवे तरीके ने, क्योंकि नौकरी देन वाले कदे भी पैसे नहीं मांगदे।
6: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। पेश है प्रोग्राम सरगम। कहते हैं जब सुरों से सुर मिलते हैं तो गीत बन जाता है, जब दिल से दिल मिलते हैं तो रिश्ता बन जाता है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, कभी ताल मिलती है तो कभी सुर बदल जाते हैं, मगर संगीत हमेशा दिल को अपने साथ बहला ले जाता है। आओ सुन दिया, ताल से ताल मिला

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते

मोहम्मद रफी ते आशा भोसले दी आवाज़ से सुन रहे सी खूबसूरत गीत। कहते हैं रात की खामोशी में सुरों का रंग घोलते हैं, कुछ पल दिल के नाम करते हैं और सुनते हैं। रंगीला रे तेरे रंग में, लता मंगेशकर दी आवाज़।

रंगी लारे गीत सुन रही सी लता मंगेशकर की आवाज़ के विच। कुछ आंखें खामोश होकर भी बहुत कुछ कह जाती हैं और कुछ नज़रें दिल में हमेशा के लिए उतर जाती हैं। इसी खूबसूरत एहसास के साथ अल सुन दे गुलाबी आंखें।

0: ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਯੇ ਸ਼ਾਮ ਮਸਤਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ, 11:05 ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश 8 अरब डॉलर से बढ़कर 13.5 अरब डॉलर कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमीकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही। श्री वैष्णव ने कहा कि एक कंपनी ने आज भारत में 5 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है और अन्य कई कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। सरकार ने कहा कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते वैश्विक परिदृश्यों के बीच ऊर्जा सुनिश्चितता जारी रखेगी। ये बयान अमरीका की प्रतिनिधि सभा द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बीच आया है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे भूटान में यूपीआई लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूर्ण हो गई है। इस दौरान भारतीय संस्थानों में भूटानी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए नेहरू वांगचुंग छात्रवृत्ति योजना के विस्तार के लिए समझौता हुआ। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री शेरिंग तोबके को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है।

0: पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। दिल्ली और बिहार सहित देश भर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रूपये जमा किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इस वर्ष ये अभियान 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। अभियान में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और साझा जिम्मेदारी पर बल दिया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के कक्षा 6 के छात्रों के लिए अनिवार्य 3 भाषा नीति को वर्ष 2027 के शैक्षणिक सत्र से लागू करने पर विचार करने का सुझाव दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छात्रों को सुविधा प्रदान करने के लिए इस स्थगन का सुझाव दिया। भारत ने तीसरे और अंतिम T20 मुकाबले में अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली है। भारत ने अफगानिस्तान को 222 रन का लक्ष्य दिया था। अफगानिस्तान ने 14वें ओवर में और एक गेंद में 94 रन ही बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi today positioned India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. He said, the world is looking for new and trusted manufacturing destinations and the country is steadily preparing itself to meet this need. He highlighted that India's growth in critical industries will strengthen global supply chains and create new opportunities amid evolving supply chain challenges around the globe. The Prime Minister stated this while inaugurating 5th edition of Semicon India at Yashobhumi in New Delhi.
2: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है, और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एक्सपीरियंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
1: Prime Minister Modi highlighted that India's semiconductor ecosystem is expanding rapidly and opening new opportunities for innovation, investment and growth. Mr. Modi said, the outlay for second phase of the India Semiconductor Mission 2.0 has been increased to $13.5 billion from $8 billion in the first phase. Later, addressing a press conference on the sidelines of the event this afternoon, Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnaw said, investment commitments worth around 1 lakh crore rupees have been received so far under the Semicon 2.0 ecosystem. He said, India will target at least 200 startups and companies engaged in chip design under the next phase of its semiconductor mission, Semicon 2.0. The 3-day conference and exhibition bring together global semiconductor and electronics ecosystem to foster collaboration, drive innovation, strengthen manufacturing capabilities, attract investment and develop future-ready talent. India today said that it will take all necessary steps to protect its economic interests and ensure energy security. The External Affairs Ministry said, country remains firmly committed to ensuring energy security for its 140 crore people and will continue to do so through diversified sourcing and on the basis of evolving market dynamics. The statement came amid the passage of a bill by the US House of Representatives that will allow President Donald Trump to impose tariffs of up to 100% on countries for procuring Russian crude oil. The Bharatiya Janata Party BJP launched a month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan from today to mark Prime Minister Narendra Modi's 76th birthday.

0: प्रोग्राम चल रहा है जी स्वागत थोड़ा दोस्त गौरव थोड़े नाल और प्रोग्राम की गल करा तो थोड़ा मन पसंदीदा प्रोग्राम है ये तुसी अपने गीत जड़े ने फरमाइशी गीत सुन सकते हो 0181 2342 171 इस नंबर पर डायल करना है और जुड़ जाना है साढ़े नाल जिस तरह कि एक कॉलर दोस्त जुड़े हुए हैं। नमस्कार जी कौन बोल रहे हैं?
1: हेलो
0: नमस्कार जी कौन बोल रहे हैं? थोड़ी आवाज मेरे तक तो पहुंच नहीं रही। हाँ जी बोलो जी।
1: राजू बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से।
0: और राजू जी बड़ी दूर बोल रहे हो, थोड़ी नेड़े आके बोलो फोन दे। हाँ जी दसो की हाल चाल है?
1: सर जी बहुत वधिया ने, ठीक ठाक।
0: चलो वधिया रहना चाहिए। फिर आज गीत केड़ा सुनना जे तुसी?
1: सन्नी सिंह दा सुनना जी, मखणा।
0: ओहो मखणा, चलो जी आओ फिर ले आओ मखण दे कटोरे ले आओ, चन्नी सिंह आ गए ने। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जी
1: मंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है जलंधर विच। सब दे दिल दे अंदर रहिंदा है
0: बहुत
1: जलंधर।
0: बहुत धन्यवाद थोड़ा।
1: थोड़ा भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाओ
0: हाँ जी हाँ जी,
1: की हाल चाल ने?
0: वधिया ठीक है। दिल्ली से पहले गर्मी पै रही है, थोड़ा
1: हाँ देखो जी, गर्मी थोड़ी थोड़ी तो है, बस चलो मौसम बदल गया है। वो मीह पिया, मीह तो
0: बदल
1: बाद
0: गया।
1: फर्क पिया, और हफ्ते तक पूरा बदल जाएगा।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: फिर असी वो जड़ियाँ पिनियाँ तो वाल रहा ना पिछले साल दियाँ, वो खानियाँ
0: अच्छा जी, जरूर ताजिया बना के खुआवांगे।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, ताजियां बन तुसी बनानी है, आपा खानियां भी हैं तो तुसी इत्थे रेडियो च दे के भी जानी है।
0: हाँ जी, तुसी कहंदे रहना असि तुहाडा नाल लै लै के खांदे रहना।
1: अच्छा नहीं, ऐतकी मैं दिल्ली आ जाना तुहाडे कोल।
0: अच्छा फिर तो वधिया गल है, फिर
1: मैं दिल्ली
0: तो
1: आ जाना 20 तो 25 तक अक्टूबर दे विच विच मैं दिल्ली आ जाना, ते फिर उत्थे तुहाडे कोल तुहाडे घर आके खानियां सी।
0: हाँ, फिर तो बड़ी अच्छी गल है, ओके है, और भी चाहिए। हाँ
1: जी, ते आज फिर गीत केड़ा सुनाइए तुहानू?
0: गीत सुना दो, वधिया जिहा सुना दो, तेरे हुए सवेरे दर्शन, अज दिन वधिया लंघूगा।
1: लखो जी, दिन वधिया लंघ गया, शुरू हो गया। आओ फिर इस गीत दे दर्शन कर लेने हैं। तुसी साडे नाल जुड़े हो
0: हाँ,
1: मनजीत जी,
0: नाले गाना
1: अरे
0: भी वधिया, नाले तुहाडे नाल गल हो गई, और वधिया हो गया।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ते आओ फिर सुनते हैं इस गीत नू। धन्यवाद जी, बहुत
0: थैंक यू
1: बहुत
0: जी,
1: शुक्रिया,
0: बहुत
1: थैंक यू।
0: बहुत धन्यवाद तुहाडा।
1: ते आओ फिर मनजीत जी दी पसंद दा जस्सी सिद्धू दा गाया ये गीत सुनते हैं।
2: The following song is coming like Mr. Kipling.

0: प्रोग्राम चल रहा है जी स्वागत और स्वागत प्रोग्राम साढ़े अगले कॉलर दोस्त जुड़ गए ने साढ़े नाल। नमस्कार जी, कौन बोल रहे ने? सत श्रीकाल जी, कौन बोल रहे ने? हाँ जी जी, केड़ा गीत सुनाइए आज तुहानू? दीदार संधू का गीत सुनना चाहते हो तुसी? लो जी, दीदार संधु जी का गीत सुना देने हैं तुहाडी पसंद। हाँ जी दसो। हाँ जी, दीदार संधु ते अमन नूरी का गाया हुआ गीत सुनना चाहते हो? लो जी, गीत तुहानू सुनाने हैं, साढ़े नाल तुसी जुड़े हो और इस तरह ही जुड़े रहो। तुहाडा सारयां दा जिहड़ा प्यार है और उहदे सदके ही ये प्रोग्राम चलते पे हैं। प्रोग्राम नाम है सौगात। तो आओ फिर सुनिए तुहाडी पसंद का गीत जी।
1: हाँ जी,
0: चलो आओ जी सुनते हैं। लो जी, इन्हां दी पसंद का गीत दीदार संधू ते अमर नूरी का गाया होया ये गीत साढ़े कोल पिया है, इहनूं चलान जा रहे हैं। उम्मीद है तुहानूं सारयां नूं गीत पसंद आएगा और तुसीं वी जे अपना मन पसंदीदा कोई भी गीत सुनना चाहते हो तो करना की है, तुहानूं सारयां नूं पता ही है। 081-23-42-171 इत्थे कॉल करो या 94-655-36-077 इस नंबर ते व्हाट्सएप कर दिओ।

0: लो जी श्रोतियों, बहुत सारे कॉलर सानू कॉल मिला रहे ने और कुछ मैसेज भी आए ने। मैसेज पढ़ांगा थोड़ी देर तक, पहले एक कॉल ले लेने हैं। अगली बारी मैसेज भी आएगी, जिन्होंने नहीं किते सारे ही कर दियो, क्योंकि सारे हुण आपां पढ़ देने ने। मेरे को दो मैसेज पए ने, उस तो बाद फिर सारियां दी वारी आ जानी है। तो करो तुसी मैसेज सारे जने 94-655-36-0-70। आपां वेखिए कौन आए ने। नमस्कार जी, कौन बोल रहे ने? बहुत वधिया जी, तुसी अपना सुनाओ। हां जी ईश्वर की कृपा, देखो हम थोड़े को दोबारा वापस पहुंच गया। तो फिर केड़ा गीत सुनना तुसी अज? सुरमेदानी। लो जी, ज्योतिका डंगरी दा सुरमेदानी। ते आओ फिर सुरमेदानी सुनने। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने
1: के लिए। ओके सर,
0: थैंक यू जी।
2: कुड़े मैनू भी आपका गीत सुना दो।
3: सुनाओ।

प्रोग्राम चल रहा है जी स्वागत और थोड़ा दोस्त गौरव है थोड़े नाल। तो सोते हो बहुत सारे गीत तो सुनाए ने और हजे भी इस प्रोग्राम लई 4 मिनट साढ़े को पे ने और जे 4 मिनटा तक कॉल आ जाती है तो कॉल नू जरूर अटेंड करांगे क्योंकि इत्थे बैठे ही असी अटेंड करन लई आ। ते उस तो पहला कुछ मैसेज मेरे को पे ने वो मैसेजा नू पढ़ांगा ताकि साढ़े नाल वो जड़े मैसेज करने वाले स्रोते ने ना वो भी जुड़े रहन। विनोद पुरी, बीपी, रंजू, अशोक पुरी, सुशील, बीके, कैलाश, नीलम, रमा, पाली, सुनील पाठक ते सारा दा सारा पूरी परिवार मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाणा तो साढ़े नाल जुड़िया जी। बहुत बहुत शुक्रिया ते जी आया नू। जनकपुरी, सहारनपुर तो जॉन डेकैस्टो, रोजी डेकैस्टो, पल डेकैस्टो ते विलिस डेकैस्टो कहते हैं कि आपका तहे दिल से शुक्रिया, हमारे नामों को किसी भी गीत में शामिल कर लेना। लीजिए हमने कर लिया, आप शामिल कर लेते हैं जी। कस्बा चिलकाना, ज़िला सहारनपुर तो मोहम्मद जरीफ अंसारी और उन्होंने नाल डॉक्टर अमीर नाजिम बहुत सारे होर स्रोते जुड़े ने, उन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जी आया नू जी। तुसी इस तरह साढ़े नाल जुड़े रहो, असी तुहाडे मन पसंदीदा जड़े गीत ने ना वो चलांदे रहने। और एक होर मैसेज है, वो मैसेज भी पढ़ देना जाते जाते। ये मैसेज किया होया सानू जसपुर उत्तराखंड तो रियासत हुसैन सिद्दकी, नाजमा, रियाज, रिफाकत, मुहम्मद रेहान, समरीन, परवीन ते माहिरा नूर होरा ने, इन्हां नू भी बहुत बहुत शुक्रिया। दलीप, मालाकार, सुनीता, योगेश, मुस्कान, जतेंद्र ते यादव मोहल्ला सनावत तो साढ़े नाल जुड़े ते सारयां दी मिली जुली फरमाइश, साढ़े ड्राइवर साहब दी भी फरमाइश सी कि गुरनाम भुल्लर दा झल्ली ये गीत सुना दिओ। अज दे प्रोग्राम दा ये आखिरी गीत है, आओ सुनदे हां।

0: देखो नी कुड़ियो किन्ना सोना मुंडा खड़ा सोने हो तो हाड़ा नाम की है
1: नाम ता मेरा जस्सी सिद्धू आ क्यों
0: ते तुसी केड़े शहर च रहने हो
1: शहर शहर ता साडा जलंधर है
0: ते तुसी चंडीगढ़ की कर दियो

बाबा पैर तरे पूजा आसन थापण सोवा। ईस्वी सन 1469 विच रायपोए दी तलवंडी जिला शेखुपुरा ननकाणा साहिब च अवतार तारन वाले बाबा नानक जी ने कुल मनुखता दे उधार वास्ते सिद्धांत स्थापित कीते, किरत करो, नाम जपो, वंड छको। आप जी ने ग्रस्त जीवन विच रहिंदिया होया किरत भी कीती ते त्याग दी मिसाल भी आप जी ने कायम कीती। आप जी सच दा पसार करन वास्ते उदासियां ते भी गए। आप जी ने नाम जपण दी उत्तम विधि भी स्थापित कीती। आप जी ने संत अवस्था दा मार्ग भी निर्धारित कीता। आप जी प्रभु नाल इक मिकसन। आप ग्रस्त जीवन विच भी विचरे। बालपण तो बाद आप जी अपनी भैण बेबे नानकी जो कि सुल्तानपुर लोधी विखे व्याए हुए सन उन्हां पास आ गए। इत्थे आप जी ने हत्थीं किरत कीती। ग्रस्त जीवन विच प्रवेश करन वास्ते सुल्तानपुर लोधी तो ही आप जी दी जंज बटाला शहर विखे पुजी। बटाला शहर विखे जिस अस्थान ते जंज दा टुका होया सेरा बंदी हुई ते आनंद कारज होए उन्हां स्थानां ते सुशोभित गुरधाम इस तत्थ नूं बयान करदे हन। जिथे बाबा पैर धरै पूजा आसन थापण सोआ। आप जी ने उत्तम ग्रस्त जीवन दी मिसाल कायम कीती कि सब तो वड्डा धर्म ग्रस्त धर्म है, पर इस सच्चे मार्ग दा धारनी ते धर्म दी पौड़ी वल कोई विरला वड्डे भागां वाला ही वधदा है। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वडभागी पाए, कोट जन्म के किल बिख नासे हर चरणी चित लाए। सरवण करदे हां भाई गुरचरण सिंह रसिया ते उन्हां दे रागी जत्थे वलों गायन कीता होया

0: संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को वडपागी पाए, कोट जन्म के किल बिखना से हर चरणी चित लाए। इस शब्द का गायन कीता सी पाई गुरचरण सिंह रसिया ते उन्होंने रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे आ इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी जसबीर सिंह।
1: सोरठ महला पंजवा। गुरपूरै कृपा धारी, प्रभ पूरी लोच हमारी, कर इशनान गृह आए, अनंद मंगल सुख पाए, संतोह राम नाम निस्तरिय, उठत बैठत हर हर त्याइय, अन दिन सुकृत करिय। रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, को वड भागी पाए, कोट जन्म के किल बिख नासे, हर चरणी चित लाए। उस्तत करो सदा प्रभ अपने, जिन पूरी कल राखी, जी जंत सब भय पवित्रा, सतगुर की सच साखी। बिघन बिनासन सब दुख नासन, सतगुर नाम दृढ़ाया, खोए पाप भय सब पावन, जन नानक सुख घर आया। ए पावन शब्द श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का उच्चारण किया होया राग सोरठ विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मुबारक अंग 621 उपर सुशोभित है। इन पावन बचना दी विचार इस प्रकार है। गुरपूरै

कृपा तारी प्रभ पूरी लोच हमारी। हे प्रभु जी दे संत जनों, जदों तो पूरे गुरु जी ने कृपा दे घर विच आ के मेरे उपर अपनी मेहर कीती है, उस वक्त तो ही परमात्मा ने साड़ी नाम सिमरन दी तांग पूरी कर दिती है। कर इशनान गृह आए, आनंद मंगल सुख पाए। कर इशनान भाव अपने मन नू नाम जल नाल पावन पवित्र करके ग्रह आए तो भाव अंतर आत्मे टिक गए हाँ, अते माया दी खातर भटकन तो बच गए हाँ। नाम सिमरन दी बरकत नाल असी आत्मक इशनान करके अंतर आत्मे टिके रहिंदे हाँ, अते आत्मक आनंद आत्मक खुशियां और हर प्रकार दा आत्मक सुख माण रहे हाँ। संतहो राम नाम निस्तरीय, उठत बैठत हर हर ध्याइय, अनदिन सोकृत करिय रहाओ। प्रभु जी दे प्यारे संत जनों, परमात्मा दे नाम विच जुड़ के ही इस विकारां भरे संसार सागर तो पार लंघ सकीदा है। इस व्यो भरे संसार समुंदर तो पार उतरन लई गुरु अर्जन देव जी बचन करदे हन, किस वास्ते उठदियां बैठदियां हर समय हरी नाम सिमरना चाहिदा है, क्योंकि संसार भर दियां सारियां नेक कमाइयां विचों प्रभु जी दे नाम सिमरन दी कमाई सर्वोत्तम है। इसलिए नाम सिमरन दी नेक कमाई हर वेले करनी चाहिदी है। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, को वड भागी पाए, कोट जन्म के किल विखनासे, हर चरनी चित लाए। गुरुदेव फरमाउंदे हन, प्रभु जी दे संत जनों, सिमरन करना ही इंसान लई गुरु दा दस्या होया जीवन दा सही रस्ता है। सिमरन ही धर्म दी ओ पौड़ी है, जिस पौड़ी राही इंसान प्रभु जी दे चरणा विच पहुँच सकदा है। पर प्रभु जी दे चरणा विच हर कोई नहीं पहुँच सकदा, क्योंकि इह सुरती दा मार्ग है। जिस भी इंसान ते पूरे गुरु जी ने कृपा कीती, उस दी सुरत प्रभु सिमरन विच लग गई। पर ऐसा गुरु दा प्यारा कोई करोड़ां विचों एक ही है। कोटन मैं नानक को नारायण जहचीत, कोई विरला भागां वाला ही यह पौड़ी भाव सिमरन दी पौड़ी प्राप्त करदा है। अते सुरती द्वारा इस पौड़ी राही परम पिता परमात्मा दे चरणा विच जुड़ जांदा है। सारियां दियां सारियां 84 लख जोनां विचों आप खुद परमात्मा ने मनुखा जन्म नूं वडियाई बख्शी है। पर जेड़ा सिमरन जेड़ा इंसान इस मनुखा जीवन दी पौड़ी तो खुंझ जांदा है, ओ मनुख बार बार जन्म मरण दे गेड़ विच पै के दुख पाउंदा है। पर जेड़ा इंसान गुरु दी शरण पैंदा है, गुरु उस नूं नाम सिमरन दी दात बख्शदा है। सिमरन दी बरकत नाल सेवक प्रभु जी दे चरणा विच अपना चित जोड़दा है, फिर उस सेवक दे करोड़ां जन्मां दे पाप नाश हो जांदे हन। उस्तत करो सदा प्रभु अपने, जिन पूरी कल राखी, जी जंत सब भए पवित्रा सतगुरु की सच साखी। प्रभु जी दे संत जनों, जिस प्रभु ने सारे संसार विच अपनी सत्या टिका रखी है, उस दी सिफतो सलाह हर समय करदे रहा करो। वो सारे जीव सच्चे सुचे जीवन वाले बन जांदे हन, जेड़े सदा कैम रहन वाली पूरे गुरु दी सिख्या नू अपने हिरदे विच वसाउंदे हन। बिघन बिनासन सब दुख नासन, सतगुर नाम दृढ़ाया, खोए पाप भए सब पावन, जन नानक सुख घर आया। जीवन दे रस्ते विच्चों सब रुकावटां दूर कर देण वाला, सारे दुखां दा नाश करन वाला प्रभु जी दा नाम, जिन्हां मनुखां दे हिरदे विच पूरे गुरु ने मेहर करके पक्का कर दिता, पंजवें सतगुरु फरमाउंदे हन, उन्हां दे सारे पाप नाश हो जांदे हन। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਸਦੀਵੀ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਵਾਪ। ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਗਰ ਬਟਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸ੍ਰੀ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨਾਲ 1544 ਸੰਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਨ 1477

जग जीतो गुरुद्वार खेला संत सार रथ उन मन लिव राख निरंकार कहो कीरत कल सहार सापत।

0: सदा एक अकल रहे, सदा अकल लिवरे हैं, करण सो इच्छा चारे, द्रोमस पोर जो निवे, खवे कस बिमल बिचारे, ये है तत् जान्यो, सर्वगत लख बिडाने, सहज पाए संचो, किरण अमृत कलबानी, गुर गम प्रमान अजर जर्यो, सत संतोख समायो, गुर अर्जन कल उचरे, चै सहज जोग निज पायो।
1: मन विश्वास पायो, गहर गोदरह दियो, घर नास्ता नठ्यो, अमे अंतर्गत पियो, रिद विकास जाग्यो, लख कल धरी जुगंतर, सतगुरु सहज समाद, रव्यो समान निरंतर, उधारो चित, दार धरण, पिखंते कल मल तरसन, सद रंग सहज कल उचरे, जस जंप लहने रसन।
2: सदा अकल लिवरह, करण स्यो इच्छा चारह, द्रुम सपूर ज्यो निवै, खवै कस बिमल विचारै, एह तत् जान्यो, सर्वगत अलख बिडाणी, सहज पाए संचयो, किरण अमृत कल बाणी, गुर गम प्रमाण तै पायो, सत संतोख ग्राह जलियो, हर परस्यो कल समुलवै, जन दर्शन लहणे पयो, हर परस्यो कल समुलवै, जन दर्शन लहणे पयो।
3: नाम अवखद नाम अधार और नाम

देवपुरी में गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंहासन दियो श्री गुरु तह बिठायो रहस्य किए सुर देव तो जस जय जय जंप असुर गए ते भाग।

अंतन पावत देव सबे मुनो इंद्र महाशिव जोग करी खुन भेद बिरंच बिचार रहो हर जाप न छाड्यो एक करी मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है संगत सृष्ट निहाल करी।